ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक सम्मत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून 2026 सुबह के 5:53 और 34 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ हो।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है, आइए सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री

नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय SR मीडिया एकेडमी।
2: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन करिए स्वीकार हमारी। नमस्ते, सलाम और प्रेज द लॉर्ड।
3: जी हाँ, यही सत्य वचन है कि जहाँ धन दौलत होती है वहीं मनुष्य का ध्यान भी लगा रहता है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जो कभी न घटता है और न जिसे चोरी किया जा सकता है।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि मनुष्य दूसरे मनुष्य के ज्ञान से जल्दी प्रभावित होकर उसका अनुसरण करने लग जाता है और फिर बाद में पछताता है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं बल्कि पिता परमेश्वर की सामर्थ पर हो, जिसने मनुष्य को बनाया और इस सारे जहां की सृष्टि की।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ, यही सत्य वचन है कि जब मन विचलित होता है तो नाना प्रकार के बुरे विचार हमें परेशान करने लगते हैं। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में

लिखा है कि जब तुम्हारा मन व्याकुल हो तो अपने पिता परमेश्वर पर विश्वास रखकर प्रार्थना करना और वो तुमको आनंद से भर देगा।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। मैसेज या फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9693644242। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, 7678438471। जी हाँ, 7678438471। आप इन नंबरों पर फोन या मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते यानी गुरुवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

एक ताजगी, एक एहसास, एक खूबसूरती, एक आस, एक आस्था, एक विश्वास, यही है एक अच्छे दिन की शुरुआत। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर सुप्रभात सुन रहे हैं आप। शालिनी है आपके साथ। सुबह के 6:21 और ठीक 18 सेकंड हुए हैं। सुनहरी धूप के साथ आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। आंखें खोलिए और इस सुंदर नज़ारे को देखिए और सुनिए ये खूबसूरत गीत।

जी बिल्कुल, यह आवाज आकाशवाणी रेनबो 102.6 से ही आ रही है। शालिनी कहते हैं मुझे। आंखें मलते हुए आपको काफी देर हो चुकी है, उठ जाइए, आपको उठाने आ गई हूं मैं। सुप्रभात सुन रहे हैं आप। सुन लेने से कितने सवाल सुलझ जाते हैं ना, और सुना देने से उलझ जाते हैं, है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं परखना नहीं समझना जरूरी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी कमियों और खूबियों के साथ अद्वितीय होता है। कमियों को परखने के बजाय उन्हें स्वीकार लेना बेहतर है। और जब आप लोगों को आंकने के बजाय उनका सम्मान करते हैं, उन्हें समझते हैं, तो विश्वास और भी मजबूत होता है ना? तो चलिए इसी सुंदर विचार के साथ इस गीत को हम सुनते हैं, और आप भी उठ जाइए, आंखें खोलिए, देखिए कितना सुंदर नजारा है चारों ओर।

जी बिल्कुल, और उसी खुदा ने आपको एक संदेश भेजा है और कहा है कि उठ जाइए, आंखें खोल लीजिए, क्योंकि ये जो सुबह है ना, सुहानी सुबह है, ये आपके जीवन में आशीर्वाद की तरह है, एक नए जीवन की तरह है, जैसे आपको नई उम्मीदों के साथ जीना चाहिए और उठना चाहिए। जो आप 5-5 मिनट करके सोते हैं और वापस से उठ जाते हैं ना, वो आपको नहीं करना चाहिए। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि परखना नहीं समझना ज़रूरी है ना। जब आप किसी व्यक्ति के व्यवहार को परखते हैं ना, तो आपका जो दिमाग है वो तुरंत फैसला लेता है, एक जज बन जाता है। लेकिन अगर आप एक गहरी सांस लें और ख़ुद से पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, बजाय कि जज बनने के आप उस चीज़ को समझना चाहें, तो आप उस चीज़ को हल कर सकते हैं। और हो सकता है उस व्यक्ति को इसी बात की तलाश हो, है ना। तो चलिए, इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। सुप्रभात, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। शालिनी है आपके साथ।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप शालिनी के साथ कार्यक्रम सुप्रभात। हम बात कर रहे थे कि परखना नहीं समझना जरूरी है, क्यों और कैसे कर सकते हैं आप बातचीत में ना, आप सहानुभूति का प्रयोग कर सकते हैं और ये सोचें कि अगर आप उस स्थिति में होते, परिस्थिति में होते तो आप कैसा महसूस करते या क्या प्रतिक्रिया देते, है ना। तो आपको फिर सामने वाला इंसान ना शायद उतना गलत ना लगे, शायद आप समझ जाएं कि उसके पीछे का कारण क्या है, जो व्यवहार आपके साथ वो उस वक्त कर रहा है उसके पीछे की वजह क्या है, और शायद आप उस बारे में बातचीत कर पाएं और वो चीज़ें सुलझ जाएं, है ना। आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप शालिनी के साथ।

जी बिल्कुल, मौला तो आही कहता है तुहानू कि तुसी नींद तो जाग जाओ ते नाले अपनी ना समझियो तो भी। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात, शालिनी कहते हैं मुझे। इसीलिए अपनी नासमझियों से जागना जरूरी है, क्योंकि समझना जरूरी है, परखना नहीं, है ना। जब कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है ना, तो हमें आदत होती है अक्सर कि हम उसकी बात सुने बिना पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि हर कोई तो यही चाहता है ना कि कोई उसे सुन ले। तो आप वो इंसान बनकर देखिए, अगर कोई व्यक्ति बोले तो सिर्फ अपनी बात कहने के बजाय या जवाब देने के बजाय उनकी भावनाओं और शब्दों के पीछे छिपे कारण को सुनिए। और जाहिर तौर पर बहुत सारी बातों का हल आपको वहीं मिल जाएगा, है ना। तो चलिए अगले गीत को सुन लेते हैं और फिर और भी बातें करेंगे आपसे। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना

0: 2027 को सफल बनाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी रेनबो से 2.6 पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात शालिनी के साथ। हम बात कर रहे थे कि परखना नहीं समझना जरूरी है। ये स्वीकार कर लें आप कि हर इंसान के ना अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। किसी को कमियों के साथ अपनाना ही उसे असल में समझना होता है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, संपूर्ण नहीं होता, है ना। हम सब में कमियां होती हैं और जब चीज़ें आपके लिए स्पष्ट ना हो तो उनकी आलोचना करने के बजाय उन्हें साफ तौर पर, खुले तौर पर पूछ लें, उन्हें स्वीकार कर लें। इससे आपको उनके नज़रिए को जानने में मदद मिलती है और ये बदलाव जो है वो एक दिन में तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, छोटे छोटे प्रयासों से रिश्तों को आप और अधिक गहरा और मजबूत बना सकते हैं। और सामने वाले को भी चाहिए कि वो खुद को पूरा ना माने, तभी वो अपने बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है ना। इसी विचार के साथ आपसे विदा लेती हूँ, इजाज़त दीजिए। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार 3री जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

और इस खुशनुमा सुबह में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक खुशहाल जीवन जीने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो ही सबसे अच्छा है। तो हमारे पास इस वक्त हमारे पल हैं जो आपके साथ जीने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं, और आपके इन पलों को और खूबसूरत बना दें, यही अंतर्मन से आवाज निकल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से सफर को, ताकि ये दिन और खूबसूरत हो जाए इस प्यारे से खूबसूरत से गीत के साथ। और कहते हैं कि जब संगीत बजता है तो दिल के तार भी झंझना उठते हैं, और पुरानी यादों में यार नए ख्वाब संजोने के लिए दिल तैयार हो जाता है।

जिंदगी तो खट्टी मीठी होती है, एहसास भी खट्टे मीठे होते हैं, बातें भी खट्टी मीठी होती हैं और यादें भी खट्टी मीठी होती हैं। और हमारी कोशिश रहती है तो यादें कैसी भी हों हमें अपने जहन में बसा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत आगे जाकर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यही यादें हमें आगे चलने के लिए मजबूर कर देती हैं, या फिर हमारे होंठों पर से ऐसा मुस्कुराहट आ जाती है कि भाई कुछ पल तो ऐसे हैं जिन्हें हम चिल्लर की तरह अपने पॉकेट में रखते हैं और जब कभी मन होता है उनको देख लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। फिलहाल दिल्ली की सुबह क्या कहती है, आज कैसा तापमान है? दिल्ली का न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो अपने आप का आप ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम के बदलाव हमारी सेहत पर भी असर डाल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी सेहत बेहतर बनी रहे और आप यूं ही मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि आप जब मुस्कुराते हैं तभी हमारा दिन भी बनता है। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे नगमे पेश करें ताकि आपकी सुबह, और मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपका प्रभात सुप्रभात हो जाए। फिलहाल कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र। यूं ही बातें चलती रहेंगी और एक और गीत मौसम के हाल के साथ, क्योंकि जब लम्हे खूबसूरत होते हैं तो बसा लूँ आँखों में, यही मन करता है।

होता है होता है, क्योंकि अगर पल खूबसूरत हो तो उन्हें आंखों में बसाने का मन तो करता ही है, लेकिन इन खूबसूरत पलों के लिए हमारा सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर हम सेहतमंद हैं तो फिर जिंदगी हो या कोई इंसान हो या फिर कैसे भी लम्हे हो, हर चीज़ हमें खूबसूरत लगने लगती है।

खूबसूरती की बात आप सोच रहे होंगे हम बार बार क्यों कर रहे हैं। तो जनाब, खूबसूरती की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम आरोग्य रहते हैं, आरोग्य के पद पर चलते हैं, तो फिर सब कुछ बेहतर हो जाता है। और इसी आरोग्य पद को लेकर हम बताना चाहते हैं कि आज हम चेयर योगा की बात करने चाहते हैं। कि अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिस के काम में हम ज़्यादा देर तक इतने मशगूल रहते हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, वहाँ से हिल भी नहीं पाते हैं, उसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे चेयर योगा की, इस आरोग्य पथ पर चलते हुए। और ये योग का एक बहुत ही सरल और सुरक्षित रूप है जिसे कुर्सी पर बैठकर किया जा सकता है। और ख़ासकर ये बुज़ुर्गों और कार्यालयों में जो लंबे समय तक बैठकर जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। और हो सकता है इतना समय आपको ना मिलता हो कि आप खड़े होकर योगा कर सकें, तो चेयर योगा जो है उससे आपके शरीर में लचीलापन आ जाता है, आपकी जो मांसपेशियाँ हैं जो शिथिल पड़ जाती हैं उनमें मजबूती आ जाती है, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस काम का होता है वो भी कम हो जाता है। और विशेषज्ञ भी इस बात को कहते हैं कि किसी भी योग अभ्यास को अपनी शारीरिक क्षमता के मुताबिक आपको करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको मार्गदर्शन चाहिए होता है एक प्रशिक्षित व्यक्ति का। और जो भी नॉन हो योगा के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं। देखिए, चेयर योगा की जब बात चलती है तो कई पारंपरिक योग आसन हैं जो कुर्सी पर बैठ कर आप कर सकते हैं, भाई साहब कुर्सी के सहारे किया जा सकता है। और ये कुछ आसन ऐसे हैं जो हम आपको बताए देते हैं, जैसे हैं चेयर ताड़ासन, जिसको हम बोलते हैं चेयर माउंटेन पोज, रीढ़ को सीधा रखने और शरीर को संतुलित करने के लिए। यानी आप पूरी अपनी जो बैकबोन है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच दीजिए, वो एकदम फिक्स हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। तो रीढ़ को सीधा करने के लिए आप चेयर ताड़ासन कर सकते हैं। चेयर कटी चक्रासन, जिसको सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट कहते हैं, ये कमर और रीढ़ की लचक बढ़ाने के लिए होता है, जो बैकबोन है उसकी बात करें। और एक है चेयर भुजंगासन, जिसको बोलते हैं सीटेड कोबरा स्ट्रेच, जो कि अपने सीने को खोलने और पीठ को मजबूत करने के लिए होता है। चेयर मार्जरी व्याघ्रासन, जिसको बोलते हैं सीटेड कैट काउ स्ट्रेच, और ये रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए होता है। चेयर पश्चिमोत्तानासन, सीटेड फॉरवर्ड बैंड बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और पीठ और पैरों की मांसपेशियों को आराम देने के लिए होता है। चेयर वीरभद्रासन होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में चेयर वॉरियर पोज, जो पैरों और कंधों को मजबूत करने के लिए होता है। चेयर पार्श खिंचाव, जिसको बोलते हैं वो है सीटेड साइड स्ट्रेच, यानी ये जो है वो कमर और शरीर के किनारों की स्ट्रेचिंग के लिए होता है। और चेयर गरुड़ासन भुजा मुद्रा, जिसको बोलते हैं ईगल आर्म्स स्ट्रेच, ये कंधों और ऊपरी पीठ के तनाव को कम करने के लिए होता है। और एक जो हम अंतिम बताने जा रहे हैं वो है बैठकर पवन मुक्तासन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सीटेड नी टू चेस्ट स्ट्रेच, जो कूल्हों और कमर को आराम देने के लिए है। और बैठे बैठे आप प्राणायाम और ध्यान अनुलोम विलोम गहरे श्वास और ध्यान के अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन चेयर योगा विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, गठिया के मरीजों, सीमित जो गतिशील वाले लोग हैं, लंबे समय तक जो लोग कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, तो भाई साहब उनके लिए है। तो आप देखिए कितने सारे आसन हमने बता दिए हैं जो चेयर पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं, है ना। चेयर ताड़ासन, चेयर कटी चक्रासन, चेयर भुजंगासन, चेयर मार्जरी व्याघ्रासन, चेयर पश्चिमोत्तानासन, चेयर वीरभद्रासन, चेयर पार्श्व खिंचाव, चेयर गरुणासन, भुजा मुद्रा, बैठकर पवन मुक्तासन, ये सारे आसन आप चेयर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। और आप को अगर लगता है कि थोड़ा बहुत आपको इसकी नॉलेज है या नहीं है, तो आप अपने आसपास देख लीजिए ना कि टीचर जानते हैं। अगर तन हमारा स्वस्थ है तो फिर जिंदगी उससे ज़्यादा खूबसूरत होनी ही नहीं है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये गीत भी कुछ ऐसे ही कह रहा है ना, प्यारा सा है। वैसे कहते हैं जब तार किसी चीज़ के बजते हैं, गिटार हो सितार हो, तो दिल को छू जाता है। ये गीत भी आपके दिल को छूने वाला है।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

यही तो होता है कि कुछ सोचने पे जो मजबूर ना करे वो प्रेम होता है, और जो कुछ सोचने पे मजबूर कर दें वो पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब पढ़ाई की बात हम इसलिए सुबह सुबह कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बात हो रही है इतिहास के पन्नों में आज की तारीख क्या समेटे हुए है, ये ज़रूर हम बताना चाहेंगे। और इसकी शुरुआत करते हैं हम 1948 से, जब सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन की ओर जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया था। अगर हम लौटें 1968 की तरफ तो मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में आर्थिक न्याय के लिए 50,000 लोगों ने प्रदर्शन किया था। 1910 की बात करें तो पहला फादर्स डे वॉशिंगटन में मनाया गया था। 1991 की बात करें तो सोवियत संघ ने हंगरी को अपने कब्जे से आज़ाद किया था। और 1945 में कई साल कैद और घर में नजरबंद रहने के बावजूद दुनिया में आज़ादी का प्रतीक बनकर उभरी आंग सान सू की का जन्म हुआ था। और 1947 की बात करें तो मशहूर ब्रिटिश भारतीय लेखक और उपन्यास सलमान रुश्दी का जन्म हुआ था आज के दिन। तो इतिहास के पन्नों में बहुत सारी ऐसी शख्सियत होती हैं जिनके बारे में हमारे लिए जाना ज़रूरी हो जाता है। वो कहते हैं ना, कोई अपनी गलतियों से, अगर पिछली गलतियों से या किसी की गलतियों से कुछ सीख लेता है तो उसकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है और हर तरह से वो संभाल संभाल के चीज़ों को आगे बढ़ता चला जाता है क्योंकि उसने सीख ले रखी होती है। लेकिन ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़ समझनी हो तो फिर हमें इतिहास के पन्नों को टटोलना पड़ता है कि भाई हर तारीख कुछ ना कुछ कह जाती है, हर तारीख कुछ ना कुछ सिखा जाती है, और हर तारीख ये बता जाती है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो बस इसलिए ज़िंदगी में कहते हैं कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गीत भी कुछ ऐसे ही कह रहा है। इसी बात से मुंह जुड़ाते हैं, मुंह बनाते हैं और कभी कभी मुंह नहीं दिखाते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है भैया, है ना। सुनो।

देखा भाई, पढ़े लिखे आदमी जरा बेहतर लगते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतर वो लगते हैं जो समझदार होते हैं। क्योंकि पढ़ना लिखना सबको जरूरी नहीं होता है। हम किस विषय को किस अंदाज में खुद से समझ लेते हैं, ये जिंदगी के सबसे बड़े मायने हैं। और जिंदगी हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा संदेश जरूर देती है कि हम उसे सीख लें। इसलिए हम हर कदम पर कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, और हर दिन कोई ना कोई ऐसी बात को अपने जहन में समेटे हुए होता है जो हमें जिंदगी का एक बड़ा लेसन दे जाता है। और बड़े संदेशों की अगर हम बात करें तो उसमें आज का जो दिन है वो भी हमें कुछ ना कुछ जागरूक करता है, हमें कुछ सिखाता है। आज अगर आज के दिन की बात करें तो आज जो दिवस मनाया जाता है वो है संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में से मनाया जाता है आज के दिन को, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, 19 जून। ये दुनिया भर में संघर्ष में यौन हिंसा के जो उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसको मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2015 में इस दिवस की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य को भी हमारे लिए समझना जरूरी हो जाता है कि किस इस विषय पे जो किस उद्देश्य के साथ इस दिन को मनाया जाता है। तो वो अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे युद्ध है, सशस्त्र संघर्ष है और हिंसक टकराव है, इस दौरान महिलाओं, बच्चों और जो बाकी कमज़ोर वर्ग हैं उनके खिलाफ जो होने वाली यौन हिंसा है उसके प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। और ये जागरूकता बढ़ाना और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में वैश्विक प्रयासों को मजबूत करता है। दुनिया का ध्यान दिलाता है इस ओर कि भाई युद्ध तो होता है लेकिन इसमें इनका क्या कसूर। और इस तरह की चीज़ों से जब ये गुजरते हैं तो बड़ा पीड़ादायक हो जाती है जिंदगी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि संघर्ष केवल जानमाल का नुकसान नहीं करते बल्कि मानव गरिमा पर भी गहरा आघात पहुंचाते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में यौन हिंसा को अब भी भय और दमन के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अपराध मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और सभ्य समाज के लिए तो एक बड़ी चुनौती बने हैं। ये दिन सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और समाज को मिलकर ऐसे अपराधों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने का संदेश भी देता है। आइए हम भी संकल्प लें कि इस विषय पर हम सभी समाज को जागरूक करने में अपना योगदान पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। आज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, यानी संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हम सभी इस विषय पर लोगों को जागरूक करें और खुद भी जागरूक हों, क्योंकि वही है ना, जब हमें चीज़ों को की गंभीरता के बारे में पता होता है तभी हम समझते हैं कि उस व्यक्ति के लिए ये कितनी भयावह हो जाती है जो इस कंडीशन से गुजर रहा है। इसलिए जीवन है हम सबके लिए एक जैसा है, दुख दर्द एक दूसरे के समझने होते हैं। और यदि हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं तो फिर इंसान किस बात के हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

अब ये दिन शब्द इतने आसान भी नहीं है, कहें तो किससे कहें। हम तो भाई उससे कहते हैं जो हमारी जिंदगी में मुस्कुराहट ला देता है। और ऐसे ही एक शख्सियत अब से कुछ दशक पहले थी जिसका नाम था नरेला वेणु माधव। और वो जब एक्टिंग करते थे या कुछ ऐसी मिमिक्री करते थे तो लोगों के चेहरे पर खुशी आई जाती थी। तो ये तीन शब्द ऐसे ही शख्सियत के लिए बने हुए हैं और आज आपको हम बताना चाहेंगे। भारत के प्रसिद्ध मिमिक्री कलाकार के रूप में उन्हें जाना जाता था और उनको भारतीय मिमिक्री का जनक भी कहा जाता है। अपनी अनोखी कला से उन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई थी और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रदर्शन करने वाले वो पहले मिमिक्री कलाकार थे। नरेला वेणु माधव ने कई मशहूर हस्तियों, नेताओं और विभिन्न बोलियों की शानदार नकल कर लोगों का मनोरंजन किया था और मिमिक्री कला को नई पहचान भी दिलाई थी और उनका इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और कहते ना कहीं से तो शुरुआत होती है और आज तो आपको तमाम ऐसे कलाकार मिल जाते हैं जो किसी न किसी की मिमिक्री करते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि उन्होंने उभू किसी की आत्मा को, किसी की सोल को हैक कर लिया हो, है ना। ऐसे कुछ कलाकार हैं जिसमें सुनील ग्रोवर का भी नाम आता है। अब हम अगर बात करें नरेला वेणुगोपाल की तो उनको मिमिक्री कला को नई पहचान उन्होंने दिलाई थी। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें वर्ष 2001 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था और आज उनकी पुण्यतिथि है। हम नरेला वेणुगोपाल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसे कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई थी जो बिल्कुल अलग हटके था, एक नया चैलेंज लिए हुआ था। और ये आसान नहीं होता कि आप लोगों की कॉपी करें और ठीक हो वो उनकी नकल निकालें और कोई ये अंदाज़ा ना लगा पाए अगर आंख बंद हो कि ये कौन शख्स बोल रहा है। तो सैल्यूट आपको। लेकिन कभी कभी हमें जब हम इस तरह की एक्टिंग शुरुआत करते हैं तो फिर गुस्सा भी आता है और वो उस गुस्से का हमें सामना करना पड़ता है। ये गीत भी देखिए ऐसे कुछ है ना दिन दिन ना तक तक तुन।

0: और ये टाटा बाय बाय भी भाई साहब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वक्त हमारा जाने का हो गया, लेकिन शालीन शालिनी यहाँ पर आ चुकी हैं जो अपनी आवाज़ से आप जो अपनी जादू बिखेरेंगी उसमें बहुत सारी जानकारियाँ भी उनके पास होंगी। लेकिन मैंने बात की थी कि मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर जब आप खुद को तैयार करते हैं तो मम्मी का चाटा भी कभी कभी पड़ता, तो मैंने ये बताने की कोशिश की। ऐसा कभी हुआ है शालिनी?
1: हाँ हाँ बिल्कुल हुआ है। चाटे पढ़ पढ़ कर ही जो है हम इतना सीखे हैं।
0: देखा, सबने ये जो मार है खाई होती है और ये मार कहीं ना कहीं याद आती है बाद में, तो हम बड़ा मुस्कुराते हैं कि देखो हमारी उस बात पे मार पड़ी थी
1: बिल्कुल
0: और वो मार ना पड़ती तो आज हम अपने जहां पर मौजूद हैं वहां नहीं होते।
1: बिल्कुल, मैं तो आज भी बच्चों वाली आवाजें निकाल कर मम्मी को मासूमियत से डरा दी कि बस करिए इतना मत डांटिए मम्मी, मुझे माफ कर दो प्लीज।
0: देखा, एक मिमिक्री आर्टिस्ट ऐसा नहीं है, वो कैसे हैक करता है, तो इन्होंने भी हैक करने की कोशिश की। अब इन्होंने हमारी सीट फिलहाल हैक कर ली है और ये हम आरजेज की ये हैकिंग जारी रहती है, लेकिन हमारी बड़ी प्यार भरी हैकिंग ये होती है और हमारी कोशिश रहती है कि आपकी जो मुस्कुराहट है वो हम बरकरार तब तक रखें जब हम अपनी मुस्कुराहट एक दूसरे की हैक करके आपकी तरफ भेज दें। तो फिलहाल कंटिन्यू रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।
1: थैंक यू।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: स्वागत है आपका, क्या किस्मत है हमारी। मेघा जी, स्वागत है आपका, क्या किस्मत है हमारी। आज नाश्ता कम पड़ेगा क्योंकि खबर आई है तुम्हारी। मैग्या जी, सोने मगड़ो की हाल चाल है। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप है मेरे साथ, नाम है मेरा शालिनी और शो का नाम तो आप जानती होंगे। चलिए बता देती हूँ, अगर नहीं जानते तो क्या हो गया। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप, और आज गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी बातें होती हैं तो आप जानते ही हैं। बहुत सारी न्यूज़ अपडेट मिलेंगी आपको, ट्रैफिक अपडेट्स मिलेंगी, और अगर आपके पास कोई अपडेट हो तो हमसे शेयर भी कर सकते हैं 9868107070 पर। ठीक है, एंजॉय करते हैं पहले वाला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या कर रही हो? छोड़ दो, मेरी कलाई की उम्र बढ़े जा रही हो, मैं उठ तो गई हूँ, अब क्या गाना भी खत्म हो गया है।
1: यही कह रहे ना आप अपनी मम्मी से हैं, जिन्होंने आपकी कलाई का मरोड़ मरोड़।

6 पर आप है मेरे साथ, नाम है मेरा शालिनी और कार्यक्रम का नाम तो आप जानते ही होंगे है? अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर कहते हैं इसे और आप सुन रहे हैं दिलचस्प बातें और साथ में इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल रही है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो गर्मी का हालचाल है ना वो कुछ ऐसा हो गया है कि जो मच्छर भी है ना वो भी कान के पास मी करते वक्त पूछते हैं कि खून ठंडा तो है, तो उनको देखकर फिर वही मन करता है, मारने का तो दिल करता नहीं है, जाने देते हैं बेचारे, चलिए जी लो तुम भी अपनी जिंदगी, एंजॉय करिए ट्रैक।

0: नहीं मतलब ठीक है, कोई आएगा वो बात तो ठीक है, मैंने सुन ली है, लेकिन कौन आएगा ये भी तो बता दो। ऐसा डरा क्या रहे हो, नीम के पेड़ पे धीम दाना दाना दाना और पता नहीं कहाँ कहाँ से। ऐसा मत करिए, डर जाती हूँ मैं। फिलहाल यहाँ पर आपके स्वागत के लिए तैयारियां कर ली मैंने मैग्या जी। आपका स्वागत है एक बार फिर से आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि शालिनी को, और शो चल रहा है यार गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। और यहाँ पर मैं आपको ये बात पहले बता दूँ जो मैं बताना भूल गई थी, कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर आज का रहने वाला है वो 40 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम जो रहने वाला है यानी कि न्यूनतम वो है 31 डिग्री सेल्सियस। तो तैयारी करके रखिएगा, आइस पैक तैयार रखिएगा और पानी की बॉटल भी साथ में रखिएगा, ओके। फिलहाल यहाँ पर छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे, आएंगे थोड़ी देर के बाद, एंजॉय।
1: आदी आदी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख,

0: रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: हाँ हाँ, गाना भी सुन लीजिएगा, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप ट्रैफिक में फंसे हॉर्न बजा कर थक गए और सामने वाले को कोसे जा रहे हैं, तो आपके लिए ना मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन काम है। 9868107070 पर आप मुझे बता सकते हैं ट्रैफिक का आंखों देखा हाल। ठीक है जी, एंजॉय करें इस ट्रैक को, मिलते हैं फिर से।

0: ठीक है, अगर डूबा है तो डूबा रहने दीजिए। और मैं तो कहती हूँ ना, थोड़ी बर्फ कूट के ना पानी में डाल दीजिए, जिसमें वो डूबा हुआ दिल आपका, थोड़ी ठंडक तो मिलेगी उससे। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, शालिनी कहते हैं मुझे। और इसके साथ मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए। वो ये है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ना शहर में 90 से ज्यादा वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड यानी कि VMS इंस्टॉल कर दिए, जिनके जरिए वाहन चालकों को ना ट्रैफिक जाम, बंद रास्तों, सड़क मरम्मत और गड्ढों से प्रभावित जो सड़कें ना, जिन पे उबड़ खाबड़ जो सड़कें हैं, सड़कें जहां पर गड्ढे ज्यादा और सड़कें कम होती हैं वही वाली, तो वहां पर उस वजह से जो जाम लगता है ना, उससे आपको निजात मिल जाएगी और उसकी निजात भी मिल जाएगी और रियल टाइम जो उसकी जो मॉनिटरिंग है ना, जानकारी भी मिल सकेगी आपको। और शहर भर में 92 साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जिनमें से 50 चालू भी हो चुके हैं। और इसके अलावा जो है, साइन बोर्ड के जरिए चालकों को ना सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और यही नहीं, इसके अलावा साइन बोर्ड में ना सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर की गई कार्रवाई का डेटा भी दिखाया गया था। जो आप उछल रहे हैं ना इतनी देर से ओवर स्पीडिंग करने के जो फिराक में है ना, वो मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो चालान काट लिया जाएगा आपका, और फिर आपकी जो फोटो है ना वो भी वहाँ डिस्प्ले पर आएगी। क्या कह रहे हैं?
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है मैडम, अगर फोटो डिस्प्ले पे आएगी तो अच्छी बात है ना, हम फेमस हो जाएंगे।
0: फेमस होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैं मजाक कर रही थी।
1: हर चीज को बहुत सीरियस ले लेते हैं आप, है कि नहीं? फिलहाल ये वाला ट्रैक एंजॉय करिए, आती हूँ मैं, क्लास लेनी थोड़ी सी मेरे बाप की।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
4: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
3: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
4: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
3: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow।

0: बिल्कुल सही बात है, दिल दे दिया है जहां तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे, दुश्मन पर धावा बोल दो, हाउस द जोश।
1: आई ये लो चाय, बॉर्डर पर बाद में जाना, मैं तुम्हारी पत्नी विमला, नींद से जागो।
2: यही रिएक्शन होने वाला है जब मैं ये खुशखबरी सुनाऊंगी आपको, और इसे सुनकर ना जो ये पूर्व अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है, तो यही हाल होने वाला है। पूर्व अग्निवीर जो हैं उनको ग्रुप सी की जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें 20% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये न्यूज है आपके लिए। और इसके तहत दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस फायर सर्विस जेल और वन एवं वन्य जीव विभागों में ग्रुप सी की सीधी भर्ती वाले पदों पर ना पूर्व अग्निवीरों को 20% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और इसमें दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, फायर सर्विस में फायरमैन, जेल विभाग में जेल वार्डन और वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड के पद पर आप शामिल हो सकेंगे। इस कदम से ना पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी को पाना जो है वो आसान हो जाएगा, है कि नहीं खुशखबरी। अब जरा नींद से जाग जाइए और खुशियां मनाइए, मिठाइयां शिठाइयां खाइए, ठीक है जी, और एंजॉय करिए ये वाला ट्रैक। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आप है मेरे साथ, नाम है मेरा शालिनी और शो का नाम तो आप जानती है गुड मॉर्निंग दिल्ली।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: अभी अभी ना उड़ती उड़ती खबर मिली है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के पास ना मौसम अच्छा हो गया।
1: मैं क्या जी ऐसे कदम होगा, गर्मी में हाल खराब हो गया है, सारा पसीना सूख गया। अब तो पसीने ने आने से भी इनकार कर दिया, कह रहा कि शरीर में पानी नहीं बचा है। अब क्या जान बचानी है तो मैं नहीं आ रहा बस। बताइए आपके यहाँ का क्या हाल चाल है, थोड़ी सी खुशी मिलेगी मुझे।
0: आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर मैं हूँ आपके साथ शालिनी, और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं कहती हूँ हाल चाल तो ठीक है ना, होनी चाहिए।

अरे मैंने कहा बस भी करो, अब क्या फर्श तोड़ के ही मानोगे? हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बहुत हो गया, बहुत झूम लिए, नहीं तो अगर आपकी माता श्री जरा गुस्से में आ गई ना, तो आपका अगर झुमाना उन्होंने चालू किया तो मैं बता रही हूँ, रोकने पे बिना आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। उनके रोकने पर तो वो तभी रुकेंगे ना जब वो रोकना चाहेंगे, तो बस फिर समझ जाइए आप। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 विद मी शालिनी, और शो चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, क्या आपने कभी सोचा है कि दही जमाने के लिए जब पहली बार दही जमाया होगा तो जामन कहाँ से आया होगा? हैं क्या कह रहे हैं, ये बच्चे वाले सवाल कहाँ से लेकर आई हो? तो बच्चे वाले सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चों की बात मैं आपसे करने वाली हूँ। तो बता देती हूँ मैं आपको कि राजधानी में जो है ना, बच्चों और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर जो है वो प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है, और जो पॉक्सो कानून है ना वो लागू करने की समीक्षा की गई है, और दिल्ली के सभी स्कूलों का जो व्यापक ऑडिट किया गया है इसके लिए, मतलब किया जाएगा, और इसका जो मकसद है वो है कि स्कूल के बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और उनसे जुड़े सभी नियमों और दिशा निर्देशों का पालन सही से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये जानकारी जो है सुचारू रूप से चलती रहे, पहुँचती रहे, ताकि बच्चों की सेफ्टी जो है वो उसे इंश्योर किया जा सके, ठीक है। लेकिन हाँ ये जरूर बताइएगा कि दही के लिए जामन पहली बार कहां से आया था। फिलहाल ये गाना चला रही हूं मैं आपके लिए, एंजॉय करिए।

ए सोना सोना ना ना ना ना, कब से कह रही हूँ मैं मत सोइए, उठ जाइए। पिछले 1 घंटे से उठाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको, हद होती है यार, मैं थक गई हूँ। आपको मेरी इस बातों का ख्याल ही नहीं है, इतनी देर से मेहनत कर रही हूँ मैं। चलिए फटाफट से उठ जाइए और रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाइए तो मैं आपको बताऊंगी कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 विद मी शालिनी। और शो क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। समय से उठेंगे तभी तो

का नाम याद रख पाएंगे ना? अगली बारी मौका नहीं दूंगी मैं आपको। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ना एक खुशखबरी है, गाजियाबाद में रहने वालों के लिए खुशखबरी है। जो दैनिक यात्री हैं वो उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा को अब मजबूत किया जाएगा। इसके लिए 100 और इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसें चलाई जाएंगी और ये जो है वो नगर विकास विभाग ने सिटी बसों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी दे दी है और इनके संचालन से जो है वो यात्रियों को जाहिर तौर पर सुविधा तो होगी और नौकरी पेशा लोगों और छात्रों महिलाओं को आवागमन में जो काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, है कि नहीं? तो अब जो बसों में छीना झपटी और लड़ाई होती रहती थी ना, वो होनी बंद हो जाएगी। जैसे कि दो लड़कियां आपस में लड़ रही थी बस में खड़े होके बैठने के लिए, सीट के लिए, तो किसी महानुभाव ने कहा कि ठीक है जो उम्र में सबसे बड़ी हो वो बैठ जाए। तो फिर तो आपको पता ही है कि सीट भरी होगी या खाली गई होगी, है? इतने होशियार तो आप नहीं। नेक्स्ट इज एंड देन ऑफ

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

तो दिल्ली वालों के लिए एक और खास खबर है मेरे पास। मेगा जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 विद मी शालिनी, और शो चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। तो खबर क्या है कि रीजनल प्लान 2041 के तहत ना एनसीआर को 3 अलग अलग जोन में बांटने का जो प्रस्ताव है वो दिया जा चुका है, और अधिकारियों के मुताबिक जो है इसमें सेंट्रल कोर एनसीआर, मिडिल एनसीआर और आउटर एनसीआर जैसे क्षेत्र जो है वो शामिल हो सकते हैं। इसका मकसद क्या है? ये मकसद है कि दिल्ली और उसके आसपास के जो घनी आबादी वाले इलाके हैं ना और दूर के जो जिले हैं उनके लिए अलग अलग विकास ढांचा तैयार किया जाए। तो आप तैयार रहिए दिल्ली का नया रूप देखने के लिए, एनसीआर का नया रूप देखने के लिए। फिलहाल मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे, जो शादियों में जो दुल्हन होती है ना वो पूरी शादी में ना उनके माथे पर शिकन नहीं दिखाई देती है ना, बहुत खुश नजर आ रही होती है, लेकिन अचानक से विदाई का समय आते ही ऐसे दहाड़े मार मार कर रोती है ना कि ऐसा लगता है कि दूल्हा उन्हें मिल नहीं रहा है बल्कि उनसे छीना जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे आपसे विदाई लेते वक्त ना बहुत दुख हो रहा है, सच बता रही हूँ, बिल्कुल ये मेरे आंसू ने जो आपको दिखाई नहीं दे रहे सच्चे हैं। तो इससे पहले कि यहाँ पर जो है बाढ़ आ जाए मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। ख्याल रखें, तो गाना सुनी जाए शालिनी सैज़, टाटा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: हाँ जी नमस्कार, आपका प्रोग्राम, प्यारा प्रोग्राम, चहेता प्रोग्राम और आपके दिल को सुकून देने वाला प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर मैं हाजिर हूँ रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए देर किस बात की, शुरू कर देते हैं फटाफट, क्योंकि मुझे पता है बेसब्री दिल में है।

तो इन बेसब्रियों को यहीं खत्म करते हैं और शुरू करते हैं दिल के तराने गाने ने पुराने। नए और पुराने गीतों का एक प्यारा सा संगम।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम नैक A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
1: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
0: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
1: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
0: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
7: पता का चाय गजब का स्वाद।
8: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
9: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
10: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार यात्रा पर रहेंगे। श्री वैष्णव पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड वेलकम टू द मैचलेस म्यूजिक आवर ऑन 102.6 एफएम रेनबो। आई एम अशानी, योर होस्ट फॉर द आवर, एंड आई एम हियर विद अ प्लेलिस्ट पैक्ड विद सॉन्ग्स दैट आर श्योर टू ब्रिंग बैक मेमोरीज। लेट्स गेट स्टार्टेड।

0: Now, from the 1973 film Anamika, here's Bahu Mein Chale Aao, a timeless melody composed by Aarti Barman and penned by Majru Sultanpuri. The song's simple arrangement lets Lata Mangeshkar's voice shine through, which is perhaps why it continues to charm listeners even after more than 5 decades.
1: इंसान को अपनी उम्र का एहसास तब होता है जब जिंदगी में उसकी बहुत सी पहलुएं धीरे धीरे बंद होती जाती हैं या ख़त्म होती जाती हैं, और पंचम मेरी जिंदगी में एक ऐसा ही पहलू है। पंचम के साथ क्या रिश्ता था मैं नहीं जानती, या मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती। पंचम के साथ मैंने बहुत फिल्मों में काम किया,

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: वेलकम बैक टू द मैचलेस म्यूजिक आवर ऑन 102.6 FM रेनबो। इफ यू आर हेडिंग आउट, हियर इज अ क्विक ट्रैफिक अपडेट। Expect slow-moving traffic on GT Canal Road near Azadpur Mandi due to ongoing construction work. Diversions are also in place near Ashram Chowk because of pipeline repair work. So do factor in a little extra time if you are using that route. And if you are stuck in traffic right now, then maybe this is your sign to pick up the phone and call your father and just say I love you. Come on, we don't say it enough and Father's Day is just around the corner. But okay, if you can't say it in words, maybe just send him this next song instead.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: Welcome back to the Matchless Music Hour on 102.6 FM Rainbow. As promised before the break, if you appreciate art, here's something that may interest you. Threshold of Dreams, a solo exhibition by Neha Bisht at the India International Center. You can visit anytime between 20th and 28th June from 11 a.m. to 7 p.m.

0: So, did you guess it right? Yes, yes, it's the legendary pairing of Asha Bhosle and Mohammad Rafi. We'll slip into a quick break now. Stay tuned.
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
7: आज की रात मजा,
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: And it's time for the last song of today's matchless music hour. I hope I gave you a few ideas for the weekend, and if you would like to wish your father on the 21st, send us your messages that day on 9868107070 and we will read them out on air only on 102.6.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का स्पष्ट संदेश था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने इसे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 में शुरू हुए इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित

इस स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ऑनरिहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मणिपुर में खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों का व्यापक तलाश अभियान जारी है। इन अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने विभिन्न भूमिगत संगठनों के 10 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया और एक अपहृत व्यक्ति को सफलतापूर्वक रिहा किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी हटा ली है। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी श्री राहुल गांधी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और प्रोग्राम शुरू हो गया है बॉलीवुड ट्रेल्स। बॉलीवुड ट्रेल्स में आज की सुबह मैं हूं आपके साथ रंजन, और मेरे साथ हैं सलमान, फरहान, आमिर, शर्मन, माधवन। रणवीर सिंह एंड लॉट्स मोर। ढेर सारा म्यूजिक, ढेर सारा प्यार, क्योंकि आज है दोस्तों शुक्रवार।

रोटियां, चाहे कल रात की हो रोटियां या फिर एकदम ताजा। अरे भैया, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आपको क्या खाने में पसंद है। क्योंकि अगर आप डिनर ब्रेकफास्ट में करने जा रहे हैं तो टेक्निकली उसे आप ब्रेकफास्ट कह सकते हैं या उसे डिनर कहेंगे। अब यह मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस की, बॉलीवुड के सितारों की और धुरंधर की जो प्रलय करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात है ऐसा। एक्चुअली धुरंधर अपने रणवीर सिंह, वो प्रलय उनकी आने वाली एक मूवी है उसके अंदर काम करेंगे, उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। इट्स गोना टेक सम टाइम, बट हाँ, क्योंकि धुरंधर ने एक तरह से खुशियां बहुत लौटाई हैं वापस से रणवीर सिंह को, और नॉट जस्ट रणवीर सिंह, आदित्य धर को भी, बिकॉज इन्होंने मूवी के अंदर सिर्फ मेहनताना ही नहीं लिया है बल्कि उसके अंदर पार्टनरशिप थी इनकी बाकायदा। So both of them, Aditya Dhar and Ranveer Singh, are reported to be marching their way to the banks. यानी हंसते खेलते एक दूसरे को गाते हुए कह रहे हैं कि मैं और तू, दोनों की राह एक ही है बैंक की तरफ। है, अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो रणवीर ने एक नई गाड़ी भी ली है, तेज तर्रार कार। दिस एंड लॉट्स मोर, आपसे यूं ही जुड़ रहेंगे आकाशवाणी रेनबो पर, सुनते रहें बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं रंजन आपके साथ।

ये किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि उसे किसी तरह का एक यू नो सक्सेस फॉर्मूला मिल जाए, और ऐसा ही प्रयास रहता है प्रोडक्शन हाउसेस का, डायरेक्टर्स का. और जब एक जोड़ी बन जाती है अच्छी, तो आप देखते हैं कि आपको पसंद आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो एक्टर्स को मिलने चाहिए. और कितना बहुत बड़ा लंबा करियर तो होता नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता है, बट प्राइमरली अगर आप कहें कि भाई द लीडिंग मैन, और वो फिल्मों के अंदर वो स्टोरीज बदलती जाती हैं, दौर बदलता जाता है. खैर, हम रणवीर की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम और भी एक्टर्स की बात कर रहे हैं जो अब अपने प्राइम से थोड़ा आगे निकल गए हैं, और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो फिल्मों में अब रोल करें तो कैसा करें. उनके लिए डायरेक्टर्स अलग अलग तरह के ट्विस्ट भी लेके आ रहे हैं, ये भी बात करेंगे, और ढेर सारी बातें आपको बताऊँगा. लेकिन साथ ही साथ आपको सरताज का सवाल तो पूछते चलें. बॉलीवुड सरताज अगर आप बनना चाहते हैं और सरताज का ताज अपने सर पर पहनना चाहते हैं, तो आप हमें लिख के भेजिए. हमारा सवाल बड़ा सिंपल है. ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी वॉर, उसके बाद वॉर टू भी आई थी, तो आप मुझे बताएं कि वॉर फिल्म में ऋतिक रोशन के कैरेक्टर का क्या नाम था. ये हमें आपने व्हाट्सएप करना है 9868107070 पर. और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम मैं एक विनर अनाउंस करूंगा, आपको कॉल भी करूंगा, तो अपने नाम के साथ इस सवाल का जवाब भेजिए और तैयार रहिए. हो सकता है आज के फ्राइडे आप बन जाएं बॉलीवुड सरताज. सुनते रहें बॉलीवुड ट्रेल्स, नीरज की आवाज में. दिस इज ट्विस्ट.

हैवी ट्विस्ट। ट्विस्ट का उपयोग आप इस शब्द का बहुत तरह से कर सकते हैं। हाथ की कलाई मुड़ जाना, इट्स अ ट्विस्ट। कमर में मोच आ जाना, इज अ ट्विस्ट। चलते चलते पैर मुड़ जाना और आप लड़खड़ा के गिर जाएं, इट्स अ ट्विस्ट। अगर स्टोरी के अंदर कोई प्लॉट में ट्विस्ट आता है तो उसे भी ट्विस्ट कहते हैं। और एक डांस फॉर्म है ट्विस्ट। अब कितने सारे ट्विस्ट आपको बताऊं, ऐसा एक ट्विस्ट आएगा आने वाली फिल्म में, थ्री इडियट्स की जो सीक्वल बनने वाली है, इट्स गॉना बी विद अ ट्विस्ट। देखिए, मेरी तो वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट मूवीज में से एक है थ्री इडियट्स, बिकॉज एज अ स्टूडेंट यू रियली सॉर्ट ऑफ रिलेट विद द मूवी। लेकिन आप कब तक स्टूडेंट बने रहेंगे, कभी तो टीचर बनेंगे। और जिंदगी में बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे, टर्न्स आएंगे, और साथ में एक टर्म आपने सुनी होगी, मिडलाइफ क्राइसिस। ये क्या है बताऊंगा इन जस्ट अ लिटल व्हाइल। सुनते रहे आकाशवाणी रेनबो का बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं आपके साथ रंजन, समवन विद अ लिटल ट्विस्ट।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: मैंने टर्म समझ में आई है कि क्वार्टर लाइफ क्राइसिस भी होता है, किसी को 20 से 30 की उम्र में अगर कुछ ऐसा क्राइसिस आता है तो उसे क्वार्टर लाइफ कहते हैं। मिड लाइफ टिपिकली 40 से 50 साल में लोग वैसा मानते हैं। वो क्राइसिस क्या है कि आप सोचते हैं कि आपने जो अचीव करना था लाइफ में कि आपने अचीव कर लिया है, अब आप और आगे क्या कर सकते हैं, एंड ऑल लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो हो सकता है मूवी आपको देखने में पसंद आएगी। अगर जब भी ये बनेगी थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आएंगे। आप ज्यादा क्राइसिस में मत जाइए।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
7: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
8: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
9: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
8: हाँ सही है, इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
9: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
8: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
10: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
12: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
11: क्या ये जांच उपलब्ध है?
13: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
14: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
13: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
14: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
15: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
16: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।
17: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
18: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
19: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
1: आज की रात मजा,
19: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
18: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
18: म्यूजिक मस्ती।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

जी हम बात करने जा रहे हैं मिड लाइफ क्राइसिस की। और क्यों मैं ये बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बात है कि जो मूवी है थ्री इडियट्स, इसके सीक्वल के अंदर राजकुमार हिरानी के अनुसार अब जब मूवी कई साल बाद आगे बढ़ गई है और जितने भी उसमें नायक थे या नायिकाएं थीं वो सब लोग अब बढ़ गए ना आगे लाइफ में, तो अब वो स्टूडेंट तो रही नहीं, अब वो मिड लाइफ क्राइसिस के ऊपर बात करेंगे। वैसे देखिए

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी और ऐसे ही कुछ जादू चलाने वाले एक अभिनेता है जिनका आज बर्थडे है, तो हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं आशीष विद्यार्थी को। हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, तमिल, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश एंड मराठी, उड़िया, ना जाने कितनी ही लैंग्वेजेस में इन्होंने काम किया है। अब चाहे फिल्म के अंदर विलन का रोल करना हो या फिर कॉमिक रोल करना हो या फिर कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल करना हो, बहुत ही बखूबी इन्होंने अपने

हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, तमिल, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश एंड मराठी, उड़िया, ना जाने कितनी ही लैंग्वेजेस में इन्होंने काम किया है। अब चाहे फिल्म के अंदर विलन का रोल करना हो, या फिर कॉमिक रोल करना हो, या फिर कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल करना हो, बहुत ही बखूबी इन्होंने अपने अपने एक्टिंग सफ़र में ढेर सारा मुकाम हासिल किया है। ध्रुवकाल फिल्म के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुके हैं और कई बार नॉमिनेट भी हुए हैं। और आजकल सोशल मीडिया पर अपने चैनल के माध्यम से खाना खाते और खिलाते घूमते फिरते दिखाई देते हैं, और ऑफ कोर्स गाए बगाए कई प्रोग्राम्स में या फिर मूवीज में काम भी करते रहते हैं।

0: खली बली
1: दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल।
0: जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल एंटरटेन रहें, हमारे साथ रहें, बातें करें, हिंदी मूवीज देखें और कहें कि है खुदा शुक्र है आज शुक्रवार है। और आज तीसरा शुक्रवार है, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज आपका खास कार्यक्रम भी आता है, तो उसका भी आपको शायद लगे हाथ इंतज़ार है, जो 1:20 के बाद से शुरू होगा। बिंदास बोल, तो मैंने कहा आपको बताता चलूं इस कार्यक्रम में थोड़ा सा कि भाई अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आगे भी जुड़े रहिएगा। खैर, हम आपको और भी ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन सरताज का सवाल तो पूछना मैं भूल ही जाता हूँ, आप भी बातों में लगा देते हो। मुझे बताइए कि वॉर फिल्म जो आई थी, ऋतिक रोशन ने उसके अंदर एक किरदार निभाया था, उस किरदार का नाम क्या था, हमें बताइए 9868107070 पर, और भेज दीजिए। एंड पॉसिबली आप बन जाएं आज बॉलीवुड सरताज।
2: जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें, कोयल की भूख लगी,

आपकी पेट की जो भूख है वो तो आप खाने से मिटा सकते हैं, एंटरटेनमेंट की भूख और प्यास के लिए आपको चाहिए कॉकटेल। आई एम नॉट किडिंग, कॉकटेल 2 आज रिलीज हो रही है भाई, यही तो बता रहा हूँ। आज आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। स्टार कास्ट में शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना साथ में है। होमी अदजानिया की डायरेक्शन में, जॉनरा है ये रोमांटिक कॉमेडी और ड्रामा है, यानी अगर आपको लवी डवी रोमांटिक मूवीज पसंद हैं। वैसे मैंने सुना है इसके अंदर कुछ यू नो आमतौर पे जैसी फिल्में होती हैं वैसे से हट के कुछ हैं, तो अपने आप देखने जाएं तो आप थोड़ा इसके बारे में पता करके जाइएगा। और जाहिर सी बात है अगर आप शाहिद के फ़ैन हैं या फिर कृति को पसंद करते हैं तो इस फिल्म का इंतज़ार आपको बहुत टाइम से रहा होगा। कॉकटेल वैसे जो पहले आई थी वो भी काफ़ी अच्छी मूवी है, गाय बगाए कभी देखो तो मन करता है कि हाँ थोड़ी देर देख सकते हैं। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं, आपसे ढेर सारी बातें करनी है और बताना है कि सलमान खान अब कौन से प्रोजेक्ट की तरफ देख रहे हैं, बट आफ्टर अ ब्रेक।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: Did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
2: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
1: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
2: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
1: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
3: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
4: Mere pyare deshvasiyon, hamare desh mein is samay एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है।

ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप

लगता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश

जी आपके मैसेजेस हमारे तक पहुंच रहे हैं और हम जानते हैं कि ना तो आप नखरे करते हैं ना हम करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग इतना प्यारा है, यही तो रिश्ता हमारा है। तो बड़े झटपट बताइए, वॉर फिल्म में ऋतिक रोशन ने जो किरदार निभाया था उनका नाम क्या है? बस थोड़ी ही देर में मैं विनर अनाउंस करने जा रहा हूँ और मोस्ट प्रॉब्ली उनसे बात भी करूँगा, तो अपने फ़ोन के इर्द गिर्द रहिएगा। हमारा नंबर है 9868107070, इस पर लास्ट चांस है, भेज दीजिए अपना मैसेज और बन जाइए बॉलीवुड सरताज। सुनते रहें आकाशवाणी का

0: आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, मैं हूं आपके साथ रंजन और हमारे साथ हमारे आज के बॉलीवुड सरताज जुड़ गए हैं। उन्हें राइट अवे लेते हैं ऑन एयर। हेलो
1: हेलो
0: जी, गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं?
1: गुड मॉर्निंग, माय नेम इज मरिया जोसेफ, आई एम फ्रॉम मडगांव गोवा।
0: एंड आप आज कैसी हैं मरिया?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू।
0: इट्स रियली नाइस टू स्पीक टू समवन फ्रॉम गोवा। आजकल मौसम कैसा है गोवा का? बाकी बातें छोड़िए, ये बताइए।
1: सुहाना है इन द सेंस, कभी धूप, हल्की हल्की सी बारिश, अभी तक मॉनसून अराइव नहीं हुआ है।
0: यू वेटिंग फॉर मॉनसून? एंड आई थिंक
1: ऑफ कोर्स
0: महाराष्ट्र में भी लेट है इस समय मॉनसून, और कह रहे हैं लगभग 20 साल में इतना लेट नहीं हुआ जितना इस बार हो गया। एक्चुअली हुआ क्या है मॉनसून को? Somebody stopped him, मतलब क्या है उसका मजा?
1: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आ जाएगा मॉनसून, नॉट टू वरी अबाउट,
0: जस्ट कीप योर
1: गॉड इज ग्रेट, आ जाएगा मॉनसून, सबको अपने अपने हिस्से की बारिश मिल जाएगी।
0: जस्ट कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड। अच्छा, आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि ऋतिक रोशन ने वॉर फिल्म में जो किरदार निभाया था उस किरदार का नाम बताइए प्लीज। आपने लिख के सही भेजा।
1: जो 2019 में वॉर फिल्म आई थी उनकी, उसमें उनका नाम था मेजर कबीर धालीवाल।
0: अरे मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, शुभकामनाएं। आज आप बनती हैं बॉलीवुड सरताज मारिया, कुछ कहना है इस पर आपको? मतलब आज पूरा दिन क्या कोई खास ऐसा कुछ करेंगी आप? कोई स्वीट डिश बना लेंगी इस वजह से या क्या करेंगी?
1: स्वीट डिश, या वी आर हैविंग मैंगोज एट होम। इस साल अच्छा खासा फसल आया है मैंगोज का, तो काफी अच्छे मैंगोज मिलते हैं यहाँ पे।
0: ओह वंडरफुल, अपना
1: I'll make some milkshake and all।
0: अपना बगान है मैंगोज का?
1: नहीं, अच्छा। ऐसा नहीं है, लेकिन मार्केट में काफी अवेलेबल है, बहुत अच्छे मैंगोज है, ऑर्गेनिक मैंगोज है, अच्छे लगते हैं,
0: तो आप इसे एंजॉय कीजिएगा। और मैं तो यही कहूंगा कि आप दैट यू टोल्ड मी दैट यू आर अ होममेकर, तो ऑब्वियसली आप अलग अलग डिशेस बनाती हैं। अल्फोंसो पसंद है या केसर पसंद है? कौन सी वेराइटी है गोवा में ज्यादा, क्या है?
1: अल्फोंसो मिलता है यहाँ पे, गोवा की स्पेशलिटी है मानकुराद मुशरा।

0: ये सब टाइप के अवेलेबल है, मल्लिका okay, करके okay, है
1: wonderful.
0: तो जो यहाँ पे लोकली मिलते हैं उसी को सपोर्ट करते हैं हम लोग.
1: चलिए ग्रेट, थैंक यू सो मच. आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, आप हमारी इसी तरह सुनते रहें. टेक केयर, बाय बाय.
0: थैंक यू वेरी मच. एंड आप लोग जो हमारे लिए करते हो, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमको बताते हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. रियली ग्रेटफुल.
1: थैंक यू सो मच. तो ये थी मरिया गोवा से जो बनी है आज बॉलीवुड सरताज. लेकिन आप निराश मत होइएगा,

तो देखिए जी, अगर आपको चलते चलते बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट बताएं तो मैं वापस आऊंगा फिल्म कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं बना रही है। 15 करोड़ का ही वो बिजनेस कर पाई है अभी तक, और 17 करोड़ में बनी थी। आज कॉकटेल 2 रिलीज हो रही है, रिव्यूज देखिए अच्छे ही आ रहे हैं। देखिए मतलब रिव्यूज नहीं, मतलब प्रिव्यूज राधा। और अगर आप देखेंगे तो आप हमें बताएंगे आपको फिल्म पसंद आई कि नहीं आई। बस जाते जाते बताता हूँ कि सलमान खान और फरहान बातचीत कर रहे हैं 2 पार्ट का एक पीरियड एक्शन ड्रामा के लिए, जो एक्सेल एंटरटेनमेंट के अंडर बनेगा, जिसे डॉन 3 के लिए रणवीर छोड़ गए थे। उसी एक्सेल एंटरटेनमेंट के लिए सलमान अब 2 पार्ट फिल्म बनाने जा रहे हैं। 2027 में टेंटेटिवली ये बनाई जाएगी। सो इसके लिए भी आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल रंजन आपसे लेता है इजाजत, मैं मिलूंगा 1:20 पर बिंदास बोल में। तैयार रहिएगा।

0: तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक

0: पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
0: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या? अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जल्द।

हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन।

0: Time to take a short break here, but stay tuned as we enter the final chapters of today's musical storybook.
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,

0: वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
2: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9,000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ, इंडियन कैंसर सोसाइटी।
2: नमस्कार श्रोताओं,

अनुभव मित्तल, एक कैंसर सर्वाइवर और इंडियन कैंसर सोसाइटी की वॉलंटियर हूँ। हमारी संस्था एक वॉलंटियर आधारित संस्था है जो पिछले लगभग 40 वर्षों से कैंसर के क्षेत्र में जागरूकता के लिए काम कर रही है। हमारी संस्था न केवल समाज में कैंसर को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करती है, बल्कि कैंसर से पीड़ित लोगों को भावनात्मक और आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। हमारी आज की वार्ता इंडियन कैंसर सोसाइटी

बल्कि कैंसर से पीड़ित लोगों को भावनात्मक और आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। हमारी आज की वार्ता इंडियन कैंसर सोसाइटी के सौजन्य से प्रस्तुत की जा रही है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, कैंसर के सामान्य रिस्क फैक्टर्स यानी जोखिम कारक, विशेष रूप से ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जब भी कैंसर की बात होती है तो हमारे मन में बहुत सवाल आते हैं, जैसे क्या कैंसर केवल धूम्रपान करने वालों को होता है, क्या अगर परिवार में किसी को कैंसर था तो मुझे भी होगा, क्या बढ़ती उम्र के साथ कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हर रिस्क फैक्टर जोखिम कारक हमारे नियंत्रण में होता है। आज की वार्ता में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जोखिम कारक होते क्या हैं। जोखिम कारक या फिर रिस्क फैक्टर्स, उनका मतलब है कोई ऐसा कारण या ऐसी परिस्थिति जो किसी व्यक्ति में कैंसर के होने की संभावना को बढ़ा सकता है। ध्यान रखिए, जोखिम कारक का होना और कैंसर का होना दोनों अलग बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति में कोई जोखिम कारक मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे निश्चित रूप से कैंसर होगा। उसी तरह कभी कभी बिना किसी जाने पहचाने जोखिम कारक के भी किसी व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। इसलिए जोखिम कारक केवल कैंसर की संभावना बढ़ाते हैं, उनका भविष्य तय नहीं करते। जोखिम कारक दो प्रकार के होते हैं, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल यानी परिवर्तनीय जोखिम कारक, ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिन्हें हम बदल सकते हैं,

आज हम इन्हीं गैर परिवर्तनीय जोखिम कारकों की चर्चा करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैंसर का सबसे बड़ा जोखिम कारक क्या है, तो शायद कई लोग बोलेंगे धूम्रपान या तंबाकू। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारकों में से एक है बढ़ती उम्र। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की कोशिकाएं लाखों करोड़ों बार विभाजित होती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कभी कभी डीएनए में छोटी छोटी मिस्टेक्स या बदलाव जमा होने लगते हैं। हमारा शरीर इन गलतियों को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह क्षमता कुछ हद तक कम हो सकती है। इसी कारण अधिकांश कैंसर के मामले 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में अधिक देखे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि युवा लोगों में कैंसर नहीं हो सकता। कुछ कैंसर बच्चों, किशोरों और युवाओं में भी देखे जाते हैं। हमारा दूसरा रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री, यानी पारिवारिक इतिहास। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, मेरे परिवार में किसी को कैंसर था, क्या मुझे भी कैंसर होगा? आंसर है नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। लेकिन कुछ मामलों में पारिवारिक इतिहास रिस्क को बढ़ा सकता है। यदि माता पिता, भाई बहन या निकट संबंधियों में कुछ प्रकार के कैंसर रहे हों, तो रिस्क सामान्य जनसंख्या की तुलना में थोड़ा अधिक हो जाता है। विशेष रूप से स्तन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर जैसे कुछ कैंसरों में पारिवारिक इतिहास की भूमिका देखी गई है। हालांकि अधिकांश कैंसर सीधे विरासत में नहीं मिलते, यानी परिवार में कैंसर हिस्ट्री का होना कैंसर होने की गारंटी बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। हम सभी अपने माता पिता से जीन्स प्राप्त करते हैं। कुछ केसेस में माता पिता से मिलने वाले जीन्स में ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो व्यक्ति में आगे चलकर कुछ प्रकार के कैंसर की संभावना बढ़ा देते हैं। जैसे कुछ परिवारों में ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर कई पीढ़ियों में बार बार देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इनहेरिटेड मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाले कैंसर सभी कैंसरों का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा होते हैं। अधिकांश कैंसर जीवन के दौरान विकसित होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं, ना कि जन्म से जीन परिवर्तनों के कारण। इसलिए

पुरुषों या महिलाओं में कुछ कैंसर अधिक सामान्य हो सकते हैं, जैसे महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर अधिक देखा जाता है, वहीं पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर विशेष रूप से पाया जाता है। कुछ कैंसर दोनों में हो सकते हैं, लेकिन उनकी आवृत्ति अलग अलग हो सकती है। यह अंतर हार्मोन, शरीर की संरचना और बायोलॉजिकल कारणों से जुड़ा होता है। यदि आप भारत जैसे बड़े और विविध देश को देखें, तो कुछ प्रकार के कैंसर कुछ क्षेत्रों या समुदायों में अधिक देखे जाते हैं, जैसे कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भोजन की कुछ पारंपरिक आदतों और अन्य स्थानीय कारणों के चलते भोजन नली यानी ईसोफेगस के कैंसर के मामले देश के कई अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक देखे गए हैं। इसी प्रकार उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर के कैंसर की दर अपेक्षाकृत अधिक पाई गई है। हालांकि ये समझना बहुत जरूरी है कि केवल किसी क्षेत्र या समुदाय से संबंध होना कैंसर होने का प्रमुख

है। हालांकि ये समझना बहुत जरूरी है कि केवल किसी क्षेत्र या समुदाय से संबंध होना कैंसर होने का प्रमाण नहीं है। इसके पीछे अनुवांशिक कारणों के साथ साथ खान पान, वातावरण और अन्य स्थानीय परिस्थितियां भी भूमिका निभा सकती हैं। इस तरह के अंतर हमें कैंसर के कारणों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के भविष्य का निर्धारण नहीं करते। आई एम श्योर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या गैर परिवर्तनीय जोखिम कारक होने का मतलब कैंसर होना हमें तय है? बिल्कुल नहीं। यह बात मैं विशेष रूप से दोहराना चाहूंगी, यदि आपकी उम्र बढ़ रही है, परिवार में

0: कैंसर होना हमें तय है?
1: बिल्कुल नहीं। यह बात मैं विशेष रूप से दोहराना चाहूंगी, यदि आपकी उम्र बढ़ रही है, परिवार में कैंसर का इतिहास है, या आपके परिवार में कोई जेनेटिक चेंज मौजूद है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको निश्चित रूप से कैंसर होगा। इसी तरह जिन लोगों में ये जोखिम कारक नहीं है, उन्हें भी कैंसर हो सकता है। कैंसर एक जटिल बीमारी है जिसमें कई कारक मिलकर भूमिका निभाते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो क्या हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं?
0: बिल्कुल नहीं।
1: यहीं पर जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति में गैर परिवर्तनीय जोखिम कारक मौजूद हैं, तो उसे चाहिए कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, शरीर में होने वाले असामान्य बदलावों पर ध्यान दें, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार

9 से 12 बजे तक खुला रहता है और यहाँ महिला और पुरुष दोनों डॉक्टर्स हैं। यहाँ का टेलीफोन नंबर है 011-23-71-6941। मैं नंबर रिपीट करूँगी 011-23-71-6941। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वेबिनार, सेमिनार, सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स और सेलिब्रेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। जाते जाते मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कैंसर के बारे में जानकारी डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि जागरूकता बढ़ाने के लिए होती है। जितना अधिक हम समझेंगे उतना ही बेहतर निर्णय ले पाएंगे। स्वस्थ रहें, सजग रहें और अपने प्रियजनों को

सवाल बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि सवाल भूलने से जवाब की तैयारी नहीं हो पाती है जनाब। और अक्सर आपने देखा होगा जिंदगी में जिस सवाल के जवाब की आप तैयारी करते हैं, कुछ समय बाद जिंदगी सवाल ही बदल देती है। बाबू मोशाय।

सादर प्रणाम हमें लिख के भेजा है आदरणीय प्रस्तुतकर्ता जी, थैंक यू सो मच, आपको भी सादर प्रणाम। पैरी पौना मैं क्या जी, ऐसा कह सकता हूँ ना, क्योंकि आप हैं सुदर्शन मुखी, अनीता एंड सिमरन मुखी सोनीपत शांति नगर से लिखती हैं, बाकायदा सभी लिख रहे हैं राधा, कि 15/5 का कार्यक्रम बिंदास बॉल जो था उसमें केवल हमारे एक मेल को शामिल किया गया और वो भी आधा अधूरा। सीरियसली आप बताइए, नहीं सीरियसली आप

लिख के भेज रहे हैं, नमस्ते आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, और कुछ आरजेस मैसेज नहीं लेते, आप हमारा मैसेज शामिल करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। अब जो मैसेज वाला प्रोग्राम होगा उसमें ज़रूर शामिल किए जाएंगे, आपके मैसेजेस भी लिए जाते हैं। बाकी एक बात का यकीन मानिए, हमारा प्रयास आपके साथ होता है, हम 100% नहीं 110% आपकी खुशी के लिए काम करते हैं।

0: चलता, बस आपकी बातों के अंदर हम ऐसे शुमार हो जाते हैं, खो जाते हैं। 9868107070 पर मैसेज कीजिए। छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस

बहुत अच्छे लगते हैं। और जनकपुरी से हमारे पास एक मैसेज आया है, वो कहाँ चला गया मैसेज? वो ये कह रहे हैं कि एक तो कव्वालियों का प्रोग्राम आप शुरू कीजिए और साथ में पंजाबी गीतों का पूरे एक एक एक घंटे के लिए। देखिए ये सुझाव हम दे देते हैं, बाकी आप गाए बगाए दिन भर में हर प्रोग्राम के अंदर एक ना दो तीन इस तरह से पंजाबी गीत तो सुनते ही रहते हैं। और वैसे गीतों की देखिए अपनी एक खासियत होती है, अपना एक चार्म होता है, अपना एक मूड होता है। जैसे अगला गाना मैं आपके लिए जो प्ले कर रहा हूँ, सोनू निगम की मखमली आवाज। इसमें क्या होता है कि जब आपको किसी चीज से बहुत लगाव हो जाता है, चाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो अनायास ही आपकी हंसी छूट जाती है। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। लौट के आऊंगा थोड़ी देर में, आपकी बातें और भी करनी है क्योंकि कार्यक्रम है बिंदास बोल आकाशवाणी रेनबो पर, जहां पर आप खोल देते हैं सभी आरजेज और उनके कार्यक्रमों की पोल।

होके वो अनकरेक्ट हो गया, तो अपना सही नाम दोबारा से लिख के भेजिए। आप लिख रहे हैं कि मैं लंबे टाइम बाद ये शो सुन रही हूँ एंड दिस इज माय फेवरेट, और मुझे मैसेज मसाला मिक्स, रेनबो जीनियस बहुत अच्छे लगते हैं। लास्ट 3 वीक्स से रेनबो जीनियस में जो प्रेजेंटर हैं बहुत अच्छा शो किया है उन्होंने, और लेकिन एग्जैक्टली डेट याद नहीं, लेकिन एक बार शो में एक कॉलर को 2 टाइम लिया गया था। थैंक यू सर। ओके, तो ऐसी शिकायतें रहती हैं, वो बात है ना। अब देखिए, हमने आपके ऊपर ईमानदारी से छोड़ दिया कि आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आप दोबारा से ट्राई करें, नाम बदल लें, तो उसके लिए आरजे के पास इतना समय नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं आपके मनोरंजन के लिए, आपकी जानकारी देने के लिए और प्यार प्यारे गाने बजाने के लिए। जस्ट लाइक द नेक्स्ट वन, आप सुन रहे हैं महीने के तीसरे शुक्रवार को आने वाला खास कार्यक्रम बिंदास बोल, जहां पर आप ही खोलते हैं हमारे कार्यक्रमों और आरजेस की पोल इन अ गुड वे।

जान का मैसेज आया है दिल्ली टैगोर पार्क से, उन्हें रेनबो के सभी कार्यक्रम पसंद हैं। थैंक यू ईशान। और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, 10 बजे हुए, 12 बजे का प्रोग्राम ना पसंद है, फोनिंग प्रोग्राम चालू करें प्लीज। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं जो 10 बजे आता था जहाँ पे आप फोन्स करते थे, फिर उसके बाद मैसेजेस वाला जो प्रोग्राम था उसे आप वापस से चाहते हैं, तो हम ये अपने आपकी जो बात है अपनी अथॉरिटीज तक, अपने अफसरान तक पहुँचा देंगे, जो लोग कार्यक्रम में कोई रूपरेखा बनाते हैं या किस तरह से कौन से कार्यक्रम कब चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो सब समय समय पर आप देखिएगा। कुछ कार्यक्रम अगर हम थोड़े समय के लिए विराम लेते हैं तो वापस से फिर लेके आते हैं, तो यही तो है पब्लिक डिमांड, यही तो है बिंदास बोल। और जो आता है महीने के तीसरे शुक्रवार, अब याद रहेगा नहीं? ओके जी, 2005 और 6 से हम आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं लगातार। ठेरोन सेंगहो नाम लिखा है आपने, जगह आप लिखते तो हमें और अच्छा लगता। कंचन सोनिया बिहार से लिखती हैं कि कैसे हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा वाला सॉन्ग में दिल है तुम्हारे का सॉन्ग सुना दीजिए। सोनिया बिहार से कंचन जी, हम बार बार दोहरा चुके हैं आज मेरे वाला सॉन्ग नहीं है, बिंदास बोल हैं, तो मेरी पसंद के गानों से काम चलाइए। ठीक है, फिर भी कोशिश करूंगा, कई बार होता है आपकी पसंद मेरी पसंद, मेरी पसंद आपकी पसंद, हमारी सबकी पसंद एक ही पसंद होती है, तभी तो हम एक स्टेशन पे मिलते हैं जो है आकाशवाणी रेनबो। सरफराज आलम लिख रहे हैं जोगी हाट दर्शना अररिया बिहार से, बड़े सारे आर्टिस्ट के नाम देखिए, अब आया ना मजेदार क्या कहते हैं मैसेज, क्योंकि अगर आप कुछ आर्टिस्ट के नाम लिखें तो उनको अच्छा लगता है। इस समय सारे आर्टिस्ट अपने काम छोड़ के बैठ जाते हैं और सुनते हैं हमारे बारे में, हमारे लिसनर्स क्या सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। ये लिखते हैं जी, रेनबो का नियमित

ज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये बताइए मैं क्या करूँ. चलिए नहीं, ऑन एयर नहीं बताता, मतलब ठीक है. और मैं उस दिन शायद यहाँ पे था, आप सही कह रहे हैं. और एक हफ्ते नहीं, ये लगातार कुछ दो तीन हफ्ते, शायद दो एक हफ्ते तो मेरे को याद है कि हमारे यहाँ बड़े यू नो एस्टीम्ड गेस्ट आए थे, बहुत सारे IAS अफसर आए थे. कुछ ये नाम आप यहाँ पे लिख रहे हैं, मुझे खुद उनसे मिलने का, हेलो हाय करने का मौका मिला था. और एक अलग ही एक रुतबा होता है, तभी तो माँ बाप कहते हैं पढ़ो लिखो कुछ बनो. तो क्या बनो वो तब समझ आता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं. आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो वेरी मच. आपने अपने कॉलेज का भी यहाँ नाम लिखा है, आप यमुनानगर हरियाणा में एक कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी जो एज है वो पढ़ाने वाली है ना. इस एज में अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी मुबारक हो आपको. और हाँ प्रिंस, आप क्यों नाराज़ हो गए, आप कह रहे हैं मैं दोबारा मैसेज नहीं करूँगा. आपने ये लिखा ना, आपने सजेशंस दिए, मैंने कोई आपके सजेशंस के ऊपर टिप्पणी नहीं कही है. मैंने ये कहा है कि देखिए जब कोई हमारे किसी भी कार्यक्रम

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और इस सफर का हम सफर आरजे वीर दमन सिंह। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर हमारा बेहद खास शो। जी हां, रेनबो डेस्टिनेशन, एक ऐसा शो जहां हम घर बैठे बैठे तय करते हैं मीलों का सफर और महसूस करते हैं भारत की धड़कन को।

बदले पानी, चार कोस पर बानी। लेकिन हमारे देश में तो हर 100 किलोमीटर पर नज़ारे भी बदल जाते हैं। कहीं आसमान को छूते बर्फीले पहाड़ हैं, तो कहीं समंदर की लहरों का शोर, कहीं सदियों पुरानी इतिहास की कहानियाँ, और ये कहानियाँ सुनाता है तो कहीं अध्यात्म और शांति का सैलाब है। आज का हमारा ये सफ़र इसी तरह तरह की ये झांकियों का जो देश है, जो अलग अलग विविधता के नाम पर है, जहाँ अलग अलग देश और हमारे अपने देश के अंदर हर जगह अलग अलग तरह की विविधता देखने को मिलती है। और आज हम सबसे पहले रुख करते हैं उत्तर का। कल्पना कीजिए कि चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर है, हाथ में गर्म हवा की प्याली और ढल झील में तैरता हुआ शिकारा। जी हाँ, मैं बात करता हूँ धरती के स्वर्ग कश्मीर की, ऊंट के गले की घंटियों की आवाज़ और मरुस्थल की हवा का झोंका। और अगर कश्मीर की ठंडक से थोड़ा आगे बढ़ें तो रंगीला राजस्थान आपका स्वागत करता है, जहाँ के आलिशान महल, जयपुर की हवा महल और जैसलमेर के सुनहरे रेत के टीले चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, पधारो मारे देश। समंदर की लहरों का शांत संगीत। और दक्षिण की ओर बढ़ें तो केरल के बैक वाटर्स में हाउस बोट की सवारी, गोवा के बीचेस की मस्ती, यही तो है हमारे भारत की असली खूबसूरती। जी हाँ, विविधता के अलग अलग रंग।

0: सेवा निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक, परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
1: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
0: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

त्रिवेंथापुरम के पास स्थित यह बैकवाटर अपने शांत और काव्यात्मक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जहां नदी, झील, समुद्र एक साथ मिलते हैं। और अगर हम समय की बात करें कि कौन सा समय सबसे बेस्ट है यहाँ घूमने के लिए, तो वो है सितंबर से मार्च के बीच का ये महीना जो होता है ना, सबसे खूबसूरत होता है, और जहाँ मौसम सुहावना भी होता है ना।

0: 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

हैं तो इस आसन को करने से बचें। इसे किसी भारी शरीर कसरत के बाद शरीर को आराम देने के लिए किया जाता है। तो ये तो थी आज जो हम आपको बात की, वो है मकर आसन के बारे में। और 21 जून को तो हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आप भी हमारे साथ जुड़िएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 21 जून को। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर दमन।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने।

इसलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन

से पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे।

और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया।

मैं चिड़िया की तरह आजाद था। उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे उससे कहीं अधिक है।

0: खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था। मैं सोचने लगा, मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?

0: एफसी है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
1: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार, आप सबका स्वागत है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री। रेडियो डॉक्टर में हम आपके लिए विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े विशेषज्ञ यानी डॉक्टर को इस प्रोग्राम में लाते हैं, जहां आप उनसे सीधा संपर्क करें और अपनी समस्या उनसे शेयर करें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष कांडपाल, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: हमारा जो आज का विषय है वो है डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इन विमेन, यानी कि महिलाओं में अवसाद और चिंता की समस्या जो है, इस पे हम आज बातचीत करेंगे। आप जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ। हम आपके प्रश्नों का और आपके सवालों का, आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे पलक मुचल की आवाज में। और अब आपको एक बार फिर से बता दें, जिन लोगों ने देर से रेडियो खोला है, कि आज का विषय क्या है। आज का विषय है महिलाओं में अवसाद और चिंता, और अंग्रेजी में कहें तो डिप्रेशन एंड एंग्जायटी इन विमेन। हमारे पास स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मनीष कांडपाल, जो मनोचिकित्सक हैं दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री। और डॉक्टर साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं, मैसेजेस भी आने लगे हैं, कुछ ऐसा ही विषय है आज का। लेकिन अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हैं नवीन प्रीत विहार से, तो उनका प्रश्न हम सुन लेते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी नवीन जी, डॉक्टर साहब आपको सुन सकते हैं और आप अपना प्रश्न पूछ लें।
1: डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, नवीन बोल रहा हूँ मैं।
2: हाँ बोलिए।
1: मैं अपनी मदर को लेकर आपसे कुछ बात करना चाह रहा था।
2: हाँ जी बताइए।
1: डॉक्टर साहब, मेरी मदर को काफी टाइम से 5-6 ईयर से कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, एज लाइक कभी उनके बैक पेन होता है, कभी उनके हार्ट में कुछ इश्यू हो जाता है, कभी उनके हेडेक होने लग जाता है। तो बहुत मैंने सारे ट्रीटमेंट करा लिए, स्पाइनल इंजरी से कराया बैक का, और आफ्टर दैट हार्ट के लिए भी उनका ट्रीटमेंट चला है। तो लास्ट मेरे को हार्ट वाले डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि इनको एंजाइना अटैक्स होते हैं अगेन एंड अगेन। तो अभी उनको एज पर टाइम तो पैक्टिल वगैरह हम लोग दे देते हैं, बट उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं, अब क्या करना चाहिए
2: डॉक्टर? नहीं, उनको डॉक्टर ने क्या बोला, एंजाइना अटैक्स होते हैं कि एंजाइटी अटैक्स?
0: एंजाइटी अटैक
1: होते हैं।
2: अगर उन्होंने एंजाइना बोला है तो एंजाइना तो बेसिकली हार्ट का इशू होता है।
1: ओके।
2: तो अगर एंजाइना है तो उसको आपको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और एंजाइटी इश्यूज देखिए, जो आप कह रहे हैं कि 4 या 5 साल से उनको दिक्कत है, कई जगह दिखाया
1: जी।
2: तो अगर एंग्जाइटी की उनको समस्या है, जैसे घबराहट होती है, छोटी बातों को लेकर वो चिंता करती है, उनको रात को नींद नहीं आती है ना, हमेशा एक नेगेटिव थॉट्स, एक डर के आवास में रहती है कुछ बुरा ना हो जाए, अगर ऐसे इश्यूज उनको हैं, तो उनको आप किसी भी एक मनोचिकित्सक से दिखाइए, क्योंकि 5-6 साल से अगर इश्यूज हैं तो फोन पे उसको बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कोई मनोचिकित्सक को आप दिखा के आपके उसमें, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, एक बार उनसे कंसल्ट जरूर करिए।
1: ओके डॉक्टर साहब,
0: थैंक यू नवीन जी। डॉक्टर साहब, हमें जो दूर दराज हमारे लिसनर सुन रहे हैं, जो महिलाएं

0: सुन रही हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप उनको ये बताएं कि एंजाइटी ये जो है, हम कैसे उसको पहचान सकते हैं, क्या है एंजाइटी, क्या वो लक्षण है जिससे कोई महिला ये जान पाए कि शी इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी,
1: है ना। देखिए, एंजाइटी या साधारण शब्दों में हम कहें घबराहट, ठीक है, या चिंता। जब भी हमको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कुछ बुरा या खराब घटने की आशंका होती है, तो जबकि उस चीज का कोई वास्तविक आधार नहीं होता,
0: अच्छा,
1: तो इस चीज को हम एंजाइटी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी घबराहट हम कहें हमारे लक्ष्य को प्राप्ति और सफलता के लिए जरूरी
0: भी
1: होती
0: है। जी,
1: अगर हमको एग्जाम के प्रति एंग्जाइटी नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे नंबर लाएंगे। पर अगर यही सारी चिंताएं बहुत ज्यादा हो जाएं, जरूरत से ज्यादा हो जाएं, ज्यादा समय तक रहें, तो इसकी वजह से हमारे हमारे जो एक पारिवारिक जीवन पे, हमारे सामाजिक जीवन

0: देखिए एंग्जाइटी के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सबसे कॉमन लक्षण जो हम कहते हैं कि घबराहट होना, दिल का तेजी से धड़कना, सांस लेने में दिक्कत आना, ये जिसे हम कहते हैं चोकिंग सेंसेशन होनी, पसीना आना, हाथ पैर कांपना, भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन होना, किसी भी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, सर में दर्द होना, हाथ पैरों में कहते मसल एक सोना, मसल हमेशा स्टिफ रहती हैं।
1: ओके,
0: तो ये सारे सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी के। जरूरी नहीं कि हर सिम्टम हर किसी को हो, पर अक्सर अगर ये सिम्टम्स किसी भी व्यक्ति को दो हफ्ते या उससे ज्यादा या कुछ महीने तक रहते हैं तो हम कहते हैं उसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। देखिए जिस तरह से हम कहें कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन, उदासीनता, ये एक नॉर्मल इमोशंस हैं। हर किसी को जिंदगी में कभी ना कभी घबराहट भी होगी, कभी ना कभी उदासीनता भी होगी।
1: जी जी,
0: तो ये एक नॉर्मल इमोशंस हैं, पर अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाए,
1: जरूरत से

0: उदासी रहना, किसी भी चीज में जिसको व्यक्ति का पहले बहुत मन करता था, जिस चीज में
1: इंटरेस्ट होता था,
0: इंटरेस्ट रहता था, अब उसमें वो इंटरेस्ट नहीं रहता, भूख नहीं लगती है, चीजों में कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, एक शारीरिक कमजोरी, एक थकान सी रहती है, काम करने की इच्छा नहीं रहती, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी कभी इतने नेगेटिव कि मरने तक के विचार आने, चीजों में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, चीजों में फोकस नहीं कर पाना, नींद ना आना या अत्यधिक नींद, ज्यादा नींद आना, अगर ये है ना, हमेशा जिसम कहते हैं शरीर में दर्द, सर में दर्द, पेट फूलना, और ये सारे सिम्टम्स 2 हफ्ते या उससे ज्यादा रहते हैं, इनमें से कोई 4 सिम्टम्स, तब हम कह सकते हैं कि उसको उदासी का रोग या अवसाद का रोग हो सकता है।
1: ओके, एक मैसेज हमारे पास आया हुआ है एसएस गुप्ता जी का रांची से, और ये पूछ रहे हैं कि क्या मेनोपॉज में डिप्रेशन और एंग्जायटी दोनों होते हैं?
0: देखिए, ऐसा तो नहीं कि मेनोपॉज में एंग्जायटी और डिप्रेशन दोनों होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक फीमेल में मेनोपॉज के दौरान इनके होने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर फीमेल को ऐसा होगा, लेकिन नॉर्मली थोड़ा सा जब हार्मोन लेवल थोड़ा सा चेंजेस आने लगते हैं तो काफी फीमेल्स में चिड़चिड़ापन, उदासी या एंग्जायटी के सिम्टम्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, और काफी केसेस में ये अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस में जब जरूरत से ज्यादा होते तो एक मनोचिकित्सक की मदद लेनी पड़ सकती है।
1: एक और मैसेज आया है प्रकाश जी का, दिल्ली से। प्रकाश जी, आपने जो मैसेज हमें लिखकर भेजा है कि यू वांट टू नो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंग्जायटी, तो अभी अभी डॉक्टर साहब ने बता दिया है, आई एम श्योर कि आप जरूर सुन पाए होंगे कि क्या है एंग्जायटी के लक्षण। तो एक बार फिर मैं आप सबको बता दूं, आज का जो विषय है वो है डिप्रेशन एंड एंग्जायटी इन विमेन, महिलाओं में अवसाद और चिंता या जो घबराहट की बीमारी है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। पर यहां पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ।
2: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
3: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
2: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे एफएम रेनबो 102.6 MHz पर।
3: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@airdelhi@gmail.com पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष कांडपाल जो कि एक मनोचिकित्सक हैं। हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है डॉक्टर साहब, लिखकर भेजा है कि नाइस प्रोग्राम, ऑफ कोर्स इट इज। हमारे साथ जब स्टूडियो में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपकी ही समस्याओं को सुलझाने के लिए होते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए होते हैं। और सरस्वती देवी, 32 साल इनकी उम्र है और ये बांका बिहार से लिखा है। इनकी वाइफ है और इनको सांस लेने में प्रॉब्लम है और घबराहट होती है, तो हम क्या करें? सांस, आपने कहा था कि धड़कनें तेज होती हैं या उस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो शायद ये सोच के इन्होंने लिख के भेजा है कि कहीं ये एंग्जायटी या डिप्रेशन के ही लक्षण ना हो।
2: देखिए, सांस लेने में दिक्कत होना और धड़कन तेज होना ये बहुत किसी भी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ये हार्ट की बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं, ये हमको कोई दमे की, अस्थमा की वगैरह के भी लक्षण हो सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इन दो लक्षणों पे कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि ये सिर्फ एंग्जाइटी की वजह से है। तो बेहतर होगा ये अपने किसी नॉर्मल फिजिशियन को दिखाएं, वो और चेकअप वगैरह कर लेंगे और कोई अगर दिक्कत नहीं है तो ये मनोचिकित्सक से कंसल्ट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि माइग्रेन पीड़ितों

0: वो हो सक ये हो जाता है। और कई बार माइग्रेन अपने आप में भी कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल चेंजेस कर सकता है ब्रेन में, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एज कम्पेयर टू नॉर्मल थोड़ा सा ज्यादा रहता है,
1: हो सकता है, हो सकता है। मैंने ये भी पढ़ा था कहीं पे कि वेमेन आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन और एंग्जायटी, इज इट ऑल्सो ट्रू?
0: हाँ, देखिए बेसिकली क्या है कि एक हम ये देखते हैं कि टिल प्यूबर्टी मेल और फीमेल में डिप्रेशन के जो रिस्क फैक्टर्स या जो प्रेवलेंस होती है वो नॉर्मल रहती है, पर प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स में रिस्क थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। ये WHO की या जो आंकड़े ये कहते हैं कि नॉर्मली 25% चांसेस रहते हैं एक फीमेल को अपनी लाइफ साइकिल में कभी भी डिप्रेशन से ग्रसित होने में, यानी हर 4 में से एक फीमेल ड्यूरिंग हर लाइफ साइकिल डिप्रेशन उनको गुजर सकती है। और जनरली हम ये देखते हैं कि एज कम्पेयर टू मेल्स डिप्रेशन फीमेल्स में दुगना होता है, जो प्रेवलेंस है उसकी डबल होती है एज कम्पेयर टू मेल्स इन फीमेल्स।
1: एंड रीजन कारण क्या हो सकता है? मे बी बिकॉज दे आर वर्किंग 24 आवर्स, इन द सेंस कि घर और बाहर दफ्तर जो भी है, जरूरी नहीं कि घर का जो माहौल है वो भी बहुत कंड्यूसिव हो या दफ्तर का जो माहौल हो वो भी बहुत कंड्यूसिव हो, तो इसका असर उनके जहन पर, उनके दिमाग पे।
0: इसके ना बहुत सारे कारण है। पहला जो एक कारण आता है वो एक हार्मोनल इश्यूज है
1: जी,
0: है ना। एक फीमेल को अपनी जिंदगी में जब प्यूबर्टी होती है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं,
1: बिल्कुल।
0: फिर एक पीरियड जो मेंस्ट्रुअल फेज आता है उसमें उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और फिर जैसे हम कहें चाइल्ड बर्थ एक ऐसा फैक्टर जिसमें चेंजेस आते हैं, और एक जब मीनोपॉज जिसे हम कहते हैं तो उसमें भी ये चीजें होती हैं। तो एक बड़ा फैक्टर हार्मोन्स का होता है फीमेल्स में डिप्रेशन होने का। दूसरा, जैसे आपने ठीक सही कहा कि एक फीमेल्स को ना जो एक मेल्स के कंपैरेटिवली हम कहें कि थोड़ा सा स्ट्रेसर्स से ज्यादा सामना करना पड़ता है, घर पे भी उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ उससे एक्स्ट्रा कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर वो वर्किंग फीमेल है तो उसको घर भी देखना है और उसको अपने वर्क का भी प्रेशर झेलना है, वो एक बड़ा फैक्टर होता है। तीसरा, हम कहते हैं कि थोड़ा सा जो साइकोलॉजिकल मेकअप होता है एक मेल का और एक फीमेल का, है ना, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उनके सोचने की और उसकी क्षमता, एक है ना जो इमोशंस को व्यक्त करने की जो वो है, वो भी थोड़ा सा अलग होती है। तो
1: कई बार वो अपने इमोशंस को सप्रेस करती
0: है, तो
1: वो कहीं ना कहीं तो फिर उसका प्रभाव पड़ता होगा जी।
0: इन चीजों से हम कहते हैं कि फीमेल्स थोड़ा सा ज्यादा प्रोन होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स डिप्रेशन के लिए।
1: ओके, बहरहाल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं डॉक्टर मनीष कांडपाल, जो कि एक मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, और हम आज बातचीत कर रहे हैं डिप्रेशन एंड एंग्जायटी इन विमेन इस विषय पे। ये एक मैसेज आया है सितेंद्र मिश्रा जी का इमलिया मानपुर सीतापुर से, और लिखते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को आप परामर्श देते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी माँ किसी भी तेज आवाज को सहन नहीं कर पाती हैं, क्या उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या फिर दिक्कत है आप मानसिक अवसाद की, आप क्या परामर्श देते हैं?
0: नहीं, देखिए किसी भी तेज आवाज को नहीं सहन कर पाना ये तो बहुत किसी काफी कारणों से हो सकता है ना, तो इसके लिए तो पहले आप एक बार ENT जो नाक कान गला विशेषज्ञ को दिखा लीजिए। कई कई बार कुछ ऐसी परिस्थिति ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें आवाज तो जिसे हम कहते हैं ज्यादा तेज सुनाई देने लगती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो पहले एक बार उनसे चेकअप कराएं, अगर वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है तो फिर आगे कैसे उनको।
1: डॉक्टर साहब, हम अगर आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपने अभी बात की थी डिप्रेशन और एंग्जायटी दोनों की, तो क्या एंग्जायटी ही आगे बढ़ के डिप्रेशन में चला जाता है, या दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड मैनेज्ड इन दी प्रेलिमिनरी स्टेज कैन बी टेकन केयर ऑफ?
0: नहीं, देखिए ऐसा है कि एंग्जाइटी एक अलग डिसऑर्डर है, डिप्रेशन एक अलग डिसऑर्डर है। जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जो प्राइमरीली जो सिम्टम्स होते हैं उसमें घबराहट होना, बेचैनी होना, ठीक है, दिल का तेजी से धड़कना, ठीक है, सांस की दिक्कत होना, ठीक है, तो और हाथों का कंपन, हाथों में पसीना आना, एक चीजों की बुरी आशंकाओं को लेके हमेशा परेशान रहना, ऐसा होता है।
1: ओके,
0: और डिप्रेशन जो एक वो दूसरा है, वो एक जिसे हम कहते हैं मूड डिसऑर्डर है, ठीक है। मूड डिसऑर्डर मतलब इसमें आदमी एक जिसे हम कहें उदासीनता में चला जाता है, इसको किसी काम में रुचि नहीं रहती, ठीक है, किसी चीज में मन नहीं लगता। तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी ऐसा जरूर हो होता है कि जिन लोगों को एंग्जाइटी है या जिन लोगों को डिप्रेशन है उनको साथ साथ एंग्जाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स जरूर होते हैं, पर अपने आप में ये दोनों एक अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं।
1: ओके, यहाँ पर दोस्तों हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, आप जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ। और एक बार फिर आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इन विमेन विषय पर आज।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@daily@gmail.com पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर और रेडियो डॉक्टर में आज का हमारा विषय है महिलाओं में अवसाद और चिंता यानी डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन विमेन।

0: उनको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है।
1: इसका जो इलाज होता है डॉक्टर साहब, कहते हैं ऐसा कि बहुत लंबा इलाज होता है, और अगर बीच में दवाइयां छोड़ दी जाएं या डिसकंटिन्यू हो गया तो फिर आपको वहीं से वापस शुरू करना पड़ता है।
0: हाँ, एक चीज मैं इसमें और आपको बता दूं, जैसे एक तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया, तो दूसरा एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर्स।
1: पैनिक डिसऑर्डर,
0: पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि बहुत सीवियर एंग्जाइटी होती है, बहुत तेज एंग्जाइटी होती है कुछ मिनटों या कुछ घंटों के लिए, और उसके बीच में वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसको ऐसे रिपीटेड अटैक्स आते हैं जिसे हम कहते हैं पैनिक अटैक्स। तो ये पैनिक डिसऑर्डर हो गया। तीसरी एंग्जाइटी जो डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं वो होता है फोबियाज, है ना। उसमें किसी व्यक्ति को किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन से या पर्टिकुलर जिसे हम कहें वस्तु से या है ना या पर्टिकुलर कार्य में से डर लगता है। तो जब भी वो व्यक्ति उन चीजों को फेस करता है तो उसको उस टाइम पे घबराहट होती है। तो ये भीड़ वाली जगहों से हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग से हो सकता है, या बहुत से लोगों को हम कहते हैं किसी जानवर से, हाइट से, है ना। तो ये अलग अलग तरह के फोबियाज होते हैं, तो ये होते हैं। और एक चौथे तरह का एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसे आज की तारीख में WHO ने स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज में कर दिया है, वो होता है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जिस व्यक्ति को बहुत ही सीवियर ट्रॉमा सहन करना पड़े,
1: जी,
0: है ना,
1: जी,
0: अपना घर टूट रहा है, वो चीजें हो रही हैं, या कोई सेक्सुअल अब्यूज किसी के साथ हो जाए, तो ऐसे लोगों को वो चीजें, वो इश्यूज बार बार आते रहते हैं, वो हमेशा घबराहट रहते हैं, उसकी इमेजेस आती हैं, ड्रीम्स आते हैं, उस चीज से वो आगे नहीं निकल पाता, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।
1: एक ट्रॉमा होने के बाद
0: ट्रॉमा
1: समय
0: के बाद,
1: होता है ना।
0: तो ये है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के टाइप। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा था इसके इलाज को लेके, देखिए एंग्जाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन को लेके है ना, ये एक बड़ी भ्रांति है कि इसका इलाज नहीं हो सकता, ठीक है। इसका इलाज, दूसरी एक भ्रांति है कि सिर्फ दवा ही खानी पड़ेगी। देखिए इसका इलाज दो तरह से होता है, एक तो हम जिसे हम कहते हैं बातचीत के जरिए या काउंसलिंग या साइकोथेरेपी, और दूसरा होता है दवाइयों के जरिए, ठीक है। ज्यादातर केसेस में दवाई बहुत लंबी नहीं चलती और ये बंद हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपको दवाइयां आजीवन खानी पड़ेंगी या दवाई खा के अब उसको आपकी उसकी लत लग जाएगी, पर हाँ ये जरूर है कि इसका पूरा कोर्स जरूर कराना होता है। अगर आप उसको बीच में छोड़ देंगे तो उस बीमारी के दोबारा लौटने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं।
1: और कहते हैं कि वहीं से फिर, जैसे मान लीजिए अगर आपने 6 महीने ट्रीटमेंट कराई है और अभी ट्रीटमेंट और चलना था, और मान लीजिए वो 1.5 साल का ट्रीटमेंट था, तो वो फिर अगेन वो 1.5 साल का ट्रीटमेंट होगा?
0: नहीं, देखिए ज्यादातर केस में ऐसा तो नहीं होता। हाँ, अगर मान लीजिए ऐसा है किसी ने डिप्रेशन का इलाज वो चेक चल रहा है, उसको पूरा असर नहीं आ रहा, पूरी तरह से ठीक नहीं है, उसने फिर दवा बंद कर दी और दवा बंद करके ये बीमारी फिर दोबारा उसी रूप में आ गई, तो हाँ उसको फिर पूरा इलाज कराना पड़ेगा। हाँ, पेशेंट ठीक हो गया है, बहुत हल्के सिम्टम्स हैं, तो फिर पूरा नहीं, जितना बचा है फिर उतना ही इलाज से बात बन जाएगी।
1: ओके, अभी आपने घबराहट की बात की थी, तो एक हमारे पास मैसेज आया हुआ है। कृष्णा देवी, उन्होंने अपना नाम लिखा है और उनकी उम्र 40 साल है, लिखती है, मेरे आधे सिर में दर्द रहता है और उसकी वजह से बेचैनी और घबराहट हो जाती है। मैंने दवाई भी कराई लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिला। हम गांव के रहने वाले हैं तो वहां पर मनोचिकित्सक कहाँ मिलेंगे? ओह गॉड, दिस इज कैन बी अ प्रॉब्लम।
0: हाँ देखिए, हम हमारे देश में ना थोड़ा सा जो मनोचिकित्सक या नॉर्मल डॉक्टर्स की जो विलेजेस में पेनिट्रेशन उतनी नहीं है, लेकिन जो ये चीज बता रहे हैं कि आधे सर में दर्द रहता है, एक बार इनको या तो फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, ये माइग्रेन या वो दिक्कत ज्यादा लग रही है।
1: ओके ओके, दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन इन विमेन इस विषय पर डॉक्टर मनीष कांडपाल से। इस वक्त स्टूडियो में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त राजश्री। और डॉक्टर साहब, डिप्रेशन की अगर बात करें, ये तो हम एंग्जाइटी की बात कर रहे थे, क्या कभी जैसे हमने अभी आपने कहा कि हाँ महिलाओं में कहीं ज्यादा, मतलब दोगुना ये प्रॉब्लम पाया जाता है, तो कोई प्रिलिमिनरी स्टेज ऐसा हो जिसका ख्याल रखा जाए, या कुछ, सी व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, कि लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, बट देयर आर टाइम्स कि उतना वक्त नहीं होता बड़े शहरों में, और मुझे लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम शायद बड़े शहरों में ज्यादा है, आप सही इंसान है बताने के लिए, इन कंपैरिजन टू स्मॉलर प्लेसेस जहां पे आपको बहुत सारा वक्त रास्ते में नहीं देना होता कहीं पहुंचने के लिए। लोग NCR में रहते हैं, वहां से ऑफिस आते हैं अपने, और वर्कलोड होता है महिलाओं को, दे एट टाइम्स फील दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन, एंड दिस फीलिंग इन इटसेल्फ इज not very good, you know, losing on things, तो ये सब का भी असर पड़ता है। तो क्या किया जाना चाहिए, यू नो लाइक

0: लाइफस्टाइल की मैं बात करूं या चीजों को कैसे एक्सेप्ट करने की क्षमता जो होती है कि आप उसको मान लें, स्वीकार कर लें, लेकिन जब आप इसको मान लेते हैं, स्वीकार करने लगते हैं, तो कहीं से वो हारने की एक संभावना या सोच जो है वो आपके ऊपर तारी होने लगती है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन।
1: देखिए, जैसा आपने कहा कि ये बड़े शहरों और गांवों की बात या छोटे शहरों को लेकर, देखिए हाँ ये जरूर है कि बड़े शहरों में डिप्रेशन डायग्नोज ज्यादा होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो लोगों में अवेयरनेस ज्यादा है और वो डॉक्टर्स के पास थोड़ा सा ज्यादा आती हैं। देखिए तनाव, बड़े शहरों में अपने अलग स्ट्रेसेस हैं, जैसे आपने कहा अलग तरह की चिंताएं, अलग तरह के तनाव में, छोटे शहरों में अलग तरह के तनाव है, है ना, रोजी रोटी को लेके, लाइट नहीं आ रही है, बहुत अलग इश्यूज हैं जो हमको पता भी नहीं। तो ऐसा कहना तो थोड़ा सा गलत होगा। हाँ ये जरूर है कि बड़े शहरों में हाँ डायग्नोसिस थोड़ा सा जल्दी होता है, क्योंकि लोग थोड़े से अवेयर हैं, फैसिलिटीज हैं,
0: वहाँ परिवार के लोग साथ हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज है, बच्चों को रेज करना है, यू नो मदर्स गो थ्रू अ गिल्ट कि भाई मैं बाहर हूँ, बच्चा घर पे है।
1: देखिए ये तो है, अब देखिए हर चीज के अपने वर्क
0: हैं।
1: हाँ दूसरा जो आपने बताया कि लाइफस्टाइल में हम क्या करें कि थोड़ा सा हम डिप्रेशन में इस चंगुल में फंसे ही नहीं। देखिए सबसे पहली चीज हम ये मान के चलें कि जो डिप्रेशन एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि डिप्रेशन हो गया मतलब कि वो आदमी मेंटली वीक है या उसके कैरेक्टर में कोई इश्यूज हैं। देखिए डिप्रेशन भी एक तरह की बीमारी है, जिस तरह के शरीर के बहुत सारे अंग हैं उनमें अलग अलग बीमारियां होती हैं, तो मानसिक रोग भी एक बीमारी है। इसके कई कारण हो सकते हैं, है ना, इसके जैसे हम कहते हैं एक बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल, इन तीन फैक्टर्स का इंटरेक्शन होता है जब एक किसी को कोई बीमारी होती है।
0: आपने कहा बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल
1: एंड साइकोलॉजिकल।
0: साइकोलॉजिकल
1: ठीक है, बायोलॉजिकल में बेसिकली उसका जेनेटिक मेकअप, हार्मोनल इश्यूज, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसे हम कहते हैं सेरोटोनिन।

0: फैक्टर्स, ठीक है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में होते हैं उस आदमी का मेंटल मेकअप कैसा है. हर आदमी को देखिए जिंदगी में कभी ना कभी तनाव आएगा. वो उसकी कोपिंग स्किल्स या उसकी उस तनाव को झेलने की क्षमताएं डिटरमाइन करती हैं कि वो डिप्रेशन में जाएगा या उनसे उबर जाएगा. जैसे हमने आपने देखा होगा कि एक क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे फेल हो रहे हैं एक सब्जेक्ट में, 10 के 10 तो डिप्रेशन में नहीं जाते, है ना. उसमें से कोई इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि इवन सुसाइड तक करने की कोशिश कर लेते हैं, और कुछ उससे कोप अप करके अगले साल अच्छे नंबर लाके उससे भी अच्छे नंबर लाते हैं. तो उस आदमी का जो मेंटल मेकअप है, उस आदमी का जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, वो भी डिटरमाइन करता है कि इसको ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी होगी या नहीं होगी. तो इन तीन चीजों की वजह से, इनके इंटरेक्शन की वजह से डिटरमाइन होता है कि एक व्यक्ति या महिला को डिप्रेशन या कोई भी मानसिक रोग होगा कि नहीं होगा.
1: ओके, यहाँ पर हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और वापस जुड़ते हैं अपने लिसनर से.

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष कांडपाल। तो चलिए वापस चलते हैं अपने विषय की ओर, जो हमारा आज का विषय है, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इन विमेन। डॉक्टर साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब ये जानना होगा कि आपने बताया कि इलाज में वक्त लगता है, इलाज होता है इसका, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं होता है, बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। और ये भी मिथ नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है। किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है, किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, चाहे महिला तो है ही, बच्चों को भी हो सकता है। और अब ये जानना बहुत जरूरी है आपसे कि इससे बचा कैसे जाए, क्या ऐसा करें जिससे इस तरह की परेशानी किसी को ना हो।
1: हाँ, देखिए बेसिकली क्या है कि सबसे पहली चीज जैसे हम कहते हैं कि एक बार डिप्रेशन हो जाए तो उसको थोड़ा सा समय लगता है ठीक होने में, और वो थोड़ा सा वो है जिसे हर चीज में अंग्रेजी में कहा हुआ था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम पहले से कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसे स्टेप्स या ऐसी वो ले लें तो उससे डिप्रेशन या एंग्जाइटी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, लेकिन चीजें थोड़ा सा कम हो सकती हैं।
0: या आपके मर्जी के खिलाफ अगर आसपास आपकी चीजें हैं तो उसको सहन शक्ति आपकी ज्यादा हो या आप इग्नोर करने की क्षमता हो।
1: हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले चीज जैसे हम जो हम कहते हैं कि ब्रेन में या हमारे शरीर में डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है,
0: खान पान का।
1: तो सबसे पहली चीज हम कहते हैं कि एक अच्छा खान पान जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एक होल न्यूट्रिटिव फूड होना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं फास्ट फूड है ना, और खाने का भी कोई रूटीन नहीं है, तो वो चीजें आपके मूड को और आपके उसको जरूर असर करती हैं। तो पहली चीज है खान पान। दूसरी चीज है कि हम देखते हैं कि एक्सरसाइज है ना, तो एक कोई भी एक्सरसाइज, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो आउटडोर स्पोर्ट्स हो, जब भी कोई आदमी एक मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करता है तो उसके ब्रेन में जो उसके फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं वो तो होते ही हैं, पर साथ में कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिसे हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, तो वो थोड़े से माइंड को रिलैक्स और मूड को एलिवेट करते हैं। तीसरी चीज है, आजकल हम जो देख रहे हैं कि थोड़ा सा हम कहते हैं नशे की जो सेवन करने की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ा सा बढ़ गई है, चाहे वो धूम्रपान है, चाहे वो अल्कोहल हो, तो उससे भी हमारे है ना, नॉर्मली क्या हम देखते हैं कि कोई टेंशन हुई तो आदमी सिगरेट पी ली,
0: थोड़े टाइम के लिए वो कम हो गया,
1: थोड़े टाइम के लिए वो रिलैक्स कर सकता है उसको, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी उसकी डिप्रेशन की प्रवृत्ति को और एंग्जाइटी के सिम्टम्स को और बढ़ाएगा। ठीक है, चौथी चीज हमें ये तो चीज होगी हमें नहीं करनी है, फिर चौथी चीज जो है हमें कुछ रिलैक्सेशिंग एक्सरसाइजेस, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो योगा है, चाहे वो प्राणायाम है, या ना उससे इन चीजों में काफी फर्क मिलती है। आजकल तो ऐसे बहुत सारे एप्स भी आ गए हैं गाइडेड इमेजरी वगैरह के, जो आपको उस एप्स के जरिए भी वो आपको गाइड करते हैं कि रिलैक्सेशन टेक्निक को आपको कैसे करनी है और कितने समय तक करनी है। ये एक इश्यूज हो गए। उसके अलावा दो चीजें हमने अपनी उसमें देखा है कि देखिए बेसिकली क्या है कि आज की तारीख में जैसे आपने खुद कहा कि हम थोड़े से गोल ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड है ना चीजों को, वो चीजें थोड़ा सा हमको ज्यादा हो गई हैं, तो उसके लिए हमको अपनी लाइफ में जैसे हम कहते हैं अपनी प्रायोरिटीज को सेट करिए। ठीक है, जो चीजें हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो हमारा कैरियर है, हमारी फैमिली रिलेशनशिप है, उसको हमें टाइम ज्यादा देना है, फिर बाकी छोटी छोटी जो हमारी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो टाइम उसको कम देना है। सीधा सा एग्जांपल मैं अपने पेशेंट्स को भी देता हूँ कि मान लीजिए एग्जाम पेपर में आपका कोई क्वेश्चन पेपर आपके पास आया है ना, जो चीजें आपको आती नहीं है आप उसमें पहले शुरुआत में लग जाएंगे, जो चीजें आएंगी आप उसमें भी समय नहीं दे पाते हैं। तो उसी तरह से हमारी जिंदगी में हमको अपनी रिलेशनशिप को, हमारे फैमिली लाइफ को, हमारे वर्क को प्रायोरिटाइज करना है कि ये इस फेज ऑफ लाइफ में दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट टू अस, तो हमको उसमें अपने टारगेट सेट करें ताकि जो अनवांटेड, जो इतनी जरूरी नहीं है, अगर वो छूट भी जाए तो इतना कोई इशू नहीं होगा। तीसरी चीज हम ये बताते हैं कि अपने स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं।

0: आपकी जिंदगी में वो स्ट्रेसेस अलग अलग होंगे. एक सिंपल सा स्ट्रेस अगर हमारी कम्यूटेशन बहुत दूर है, माने बहुत दूर से आते हैं, ट्रैफिक में फंसना कई लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ा एंग्जाइटी का स्रोत बन जाता है. तो बेसिकली हमको अपने स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करना है, तो उस बेसिस पे हम अपने स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उन चीजों पे बेटर एक्ट कर सकते हैं. चौथी चीज है कि देखिए घंटे हम सबके पास 24 ही
1: है
0: ना, तो हमको अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं घंटों में जीनी है, तो हमको अपने को प्रायोरिटाइज करके वो हमको करना है. फिर एक चीज और हम देखते हैं कि अगर हम उन व्यक्तियों के संपर्क में हैं जो हमको एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक आशावादी वो प्रदान करते हैं, अगर उनसे उसमें रहेंगे, हमारा सोशल सर्कल अगर वो रहेगा, तो हम डिप्रेशन या चिंता में जाने के हमारे चांसेस कम होंगे. तो एक हमारा एक अच्छा सोशल सर्कल भी हमको डिप्रेशन से या नेगेटिव थॉट से बचाता है. और एक आखिरी चीज है अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना. ठीक है, कई बार ऐसा होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम उन भावनाओं को दबाना शुरू करते हैं और हमको खुद ही नहीं पता लगता कि हम दबाते दबाते हमारा वो एक नेचर का पार्ट बन जाती है, फिर वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं. तो कोई भी हमारी जिंदगी में ऐसा व्यक्ति, चाहे वो आपका स्पाउस है, चाहे आपकी माँ है, चाहे भाई है, चाहे फ्रेंड है, तो जिससे हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाए.
1: कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि यू कांट एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड यू सप्रेस, बिकॉज आपको पता है कि अगर आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया तो उसका रिपरकशन नेगेटिव हो जाएगा, या और यू नो वोंट बी वेरी, यू वोंट फील लाइट एंड मे बी इट एनहांसेस योर प्रॉब्लम फर्दर.
0: देखिए अगर कोई ऐसे इमोशनल इश्यूज हैं जिसको आपको लगता है कि अगर मैं किसी को बता दूं तो थोड़ा सा और नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए, तो ऐसे में हम एडवाइस करते हैं कि वो पेशेंट ना एक डायरी लिखना शुरू कर दे, है ना. जैसे आपकी कोई भी इमोशंस है, कोई भी फीलिंग्स है, आप नेगेटिव है, आप उसको नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आपको लगता है मैं उसको बताऊंगी तो मेरे बारे में एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो आप कुछ नहीं करें. रात को जो भी आपके इश्यूज हैं, कोई भी आपको दिक्कत है, वो एक डायरी में आप चाहे उसको या एक पेज में आप लिख के

0: लाइट एंड मे बी इट एनहांसेस योर प्रॉब्लम फर्दर।
1: देखिए अगर कोई ऐसे इमोशनल इश्यूज हैं जिसको आपको लगता है कि अगर मैं किसी को बता दूं तो थोड़ा सा और नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए, तो ऐसे में हम एडवाइस करते हैं कि वो पेशेंट ना एक डायरी लिखना शुरू कर दे, है ना। जैसे आपकी कोई भी इमोशंस है, कोई भी फीलिंग्स है, आप नेगेटिव है, आप उसको नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आपको लगता है मैं उसको बताऊंगी तो मेरे बारे में एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो आप कुछ नहीं करें। रात को जो भी आपके इश्यूज हैं, कोई भी आपको दिक्कत है, वो एक डायरी में आप चाहे उसको या एक पेज में आप लिख के

0: इससे आपकी जो इमोशंस है वो इस तरह से
1: वेंटिलेशन आउट हो जाएंगे। बिल्कुल, देखती हो कोई लिसनर कोशिश कर रहे हैं बहुत देर से हमसे जुड़ने के लिए। हेलो,
2: हेलो मैम, नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते, अपना नाम बताएं।
2: मैं सीमा परवीन बात कर रही हूँ, सदरुद्दीन नगर, जिला बिजनौर से।
1: हाँ क्या सवाल है आपका सीमा?
2: मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं जब पढ़ाई करती हूँ ना तो मेरे सर में बहुत दर्द होता है।
1: पढ़ाई करते वक्त सर में दर्द होता है
2: जी?
1: पढ़ने का मन करता है
2: जी?

अभी आप रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम सुन रहे थे और आज हमारे साथ थे डॉक्टर मनीष कांडपाल, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से, और हम बातें कर रहे थे डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इन विमेन विषय पर।

0: कार्यक्रम से संबंधित किसी भी सुझाव या फीडबैक के लिए आप हमें healthairdelhi@gmail.com पर लिख सकते हैं, अपने मैसेजेस अपने मेल्स हमें भेज सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी आपसे लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे

0: किसी भी सुझाव या फीडबैक के लिए आप हमें healthairdelhi@gmail.com पर लिख सकते हैं, अपने मैसेजेस अपने मेल्स हमें भेज सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी आपसे लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में कोरिया की किम मिनसिन को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, नमे प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूँ आरजे चेतन। आज हम एक ऐसे विषय उठा रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से हम में से कई लोगों की रुचि है, कार्य और जीवन में संतुलन। स्वस्थ जीवन शैली के लिए रणनीतियाँ, चाहे आप यात्रा पर हो, व्यायाम कर रहे हो या बस एक शांत पल का आनंद ले रहे हो, आइए अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संबंध स्थापित करने के ठोस तरीके पर गौर करें। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके इस भवंडर में काम और जीवन के बीच उस मधुर स्थान को छूना एक तेज रफ्तार ट्रेन पकड़ने की कोशिश करने जैसी महसूस हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या ये सिर्फ एक पहेली से कहीं अधिक है। ये हमारी भलाई को बरकरार रखने और हमारी खुशी के स्तर को ऊपर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जब तक ये प्रोग्राम खत्म न हो आप आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हम कुछ व्यावहारिक रणनीतियों को उजागर करने जा रहे हैं। ये केवल आपकी सामान्य युक्तियां नहीं है, ये कार्य प्रतिबद्धताएं और व्यक्तिगत पूर्ति को संतुलित करने का नाजुक नृत्य के माध्यम से शानदार ढंग से चलने के लिए आपके भरोसेमंद रोड मैप की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस संतुलन क्रिया को थोड़ा और अच्छा संतुलन बनाते हैं। तो अब दोस्तों, इस

तथ्य पर हाँ कहकर शुरुआत करें कि उस आदर्श संतुलन तक पहुंचना एक बार की मंजिल के बजाय निरंतर चलने वाला साहसिक कार्य की तरह है। इसे एक यात्रा के रूप में देखें, न कि एक पड़ाव के रूप में। चाल एक ऐसी लाए कि खोज करना है जो आपके लिए क्लिक करती है, कुछ ऐसा जो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन और जुनून को बढ़ावा देने के साथ साथ उन पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने देता है। यह सब उस जगह को खोजने के बारे में है जहां आपका काम और व्यक्तिगत दुनिया सामंजस्य स्थापित करती है, एक ऐसा माहौल बनाती है जो विशिष्ट रूप से आपका है। हाँ प्रिय श्रोता, काम में आपके समय का एक बड़ा हिस्सा लग जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे व्यक्तिगत गतिविधियां आपके शेड्यूल में लुका छुपी खेल रही है। तो आइए इस बारे में बात करें कि आत्म देखभाल कैसे करें, क्योंकि आप व्यस्त कार्यक्रम के बीच है, तरोताजा और विश्राम के उन क्षणों के हकदार हैं। तो आइए दोस्तों एक गेम चेंजर पर जूम इन करें, वह है सीमाएं निर्धारित करना। नॉनस्टॉप डिजिटल कनेक्शन के इस युग में काम उस दोस्त की तरह हो सकता है जो अपने स्वागत से ज्यादा देर तक रुकता है। काम के घंटे और व्यक्तिगत समय के बीच एक रेखा खींचना अपना खुद का जादुई मंत्र रखना जैसा है। यह अराजकता में संरचना लाता है और उस भयावह राक्षस के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करता है। दोस्तों हम सीमाएं तय करने की बात कर रहे हैं। आप जूम कॉल, ईमेल और कार्य से निपटने के एक दिन पूरा करते हैं। आप सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करने के बजाय आप विराम कर सकते हैं। ये सीमाएं निर्धारित करने का जादू है, ये घोषणा करने के बारे में है। ठीक है, काम करो, आपकी बारी है, अब ये व्यक्तिगत समय है। ये न केवल आपके निजी जीवन को काम के भोज तले दबने से बचाता है बल्कि आपके मस्तिष्क को भी वह आवश्यक विश्राम देता है जिसका वो हकदार है। काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस कहलाता है मेरे दोस्तों। इस तालमेल के बिगड़ने से काफी कुछ बिगड़ सकता है, इसीलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिट एंड फाइन रहने के लिए लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस का होना बेहद जरूरी है। कामयाबी के लिए घंटों घंटों तक मेहनत करना ठीक माना जाता है, लेकिन कुशल और हेल्थी लाइफ के लिए काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाइए, इसे वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाता है। सरल शब्दों में कहे तो काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस है। आप प्रायोरिटीज फिक्स करें मेरे दोस्तों, प्राथमिकता तय करें। एक समय में एक ही काम करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटीज तय करना पड़ेगा। जो काम पहले जरूरी है उसे पहले करना चाहिए और गैर जरूरी कामों को बाद में करें। इससे पर्सनल लाइफ के लिए समय मिल जाता है। काम में जो छुट्टियां मिले उसे सही तरह मैनेज करें, जिससे घर के किसी जरूरी इवेंट मिस न हो। बात समझनी चाहिए कि जिंदगी में जो समय आ रहे हैं वो बीत जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे। फैमिली के साथ दोबारा टाइम भी नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑफिस के काम के साथ साथ अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करें। हर किसी के पास एक निश्चित समय है, इसीलिए

ख्याल रखना जरूरी है कि आप अपनी पूरी दिनचर्या की सही प्लानिंग करें। इसके लिए आपको सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहली शर्त यह है कि आपको वक्त बर्बाद करने के बजाय इसको आपको फोकस करने के लिए यूज करना चाहिए। अपने बच्चों की रूटीन और फिर ऑफिस पहुंचकर वहां के कामों को पूरा करने का प्लान पहले ही करना चाहिए। हर काम का प्राथमिकता तय करें, जैसे कि मैंने आपने पहले बोला कि प्रायोरिटाइज योर वर्क। अपना होमवर्क समय पर करें, अपने लिए कुछ समय निकालें, जीवन साथी से खुलकर बात करें। वर्किंग वुमेन होने के नाते आपकी जिंदगी बिल्कुल सहज और सामान्यता तरीके से चले, इसके लिए आपको अपने जीवन साथी की मदद लेनी चाहिए। उसे हिचक तोड़कर सारी बातें करें और दोनों मिलकर घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों को आपस में बांट लें। इससे आपको परेशानी नहीं होगी और काम भी आसानी से मिल बांट कर हो जाएगा। घर का काम ऑफिस, ऑफिस का काम घर पर न लाए। ये भी सुखी जीवन जीने का मूल मंत्र है कि घर के काम को कभी भी ऑफिस में न लाए। प्रोफेशनल की तरह बर्ताव करें और ऑफिस के काम को भी कभी घर पर न लेकर जाए। ऑफिस का सारा काम वही खत्म करके आए। जो महिला घर को और ऑफिस दोनों मैनेज करती है, उनके दिमाग में कई सारे बातें चलती रहती है। इससे इन्हें तनाव भी अधिक होता है, इससे कई बार डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं। इसके लिए इन बातों का रखे ध्यान जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, जिंदगी में हर बात को बहुत अधिक गंभीरता से न लिया करें। किसी भी चीज के बारे में दिन भर सोचते न रहना। सकारात्मक चीजें करें और नेगेटिव बातों को दिमाग में लेने की कोशिश न करें। दिन में कम से कम समय ही सही मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। काम को बाद में करने में भरोसा न छोड़ो। इससे आप अपने दिमाग को शांत रखकर अपने मेंटल हेल्थ को खुद मैनेज कर सकते हैं। कहने को ये बात आम लगती है, लेकिन ये सच है। घर परिवार और ऑफिस के चक्कर में कई बार हम खुद को पूरी तरह से भूल जाते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका शेड्यूल कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपनी सेहत के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालें। सुबह व्यायाम करने से दिन भर आपका दिमाग और शरीर अच्छा रहेगा। ये भी बेहद जरूरी है कि बड़ी खुशियों का इंतजार न करें। वक्त मिलते ही कम दिनों के लिए सही वेकेशन पर जरूर जाइए, कई परिवार के साथ घूमे और कभी बाहर खाने पर चले जाए या कभी फिल्म देखने जाए। कुछ नहीं तो नहीं, अपने घर के आसपास वाले पार्क में जाके वॉक कर लीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, कुछ अच्छा सा काम जो आपको अच्छा लगे करने में, जैसे कि आपके हॉबीज रहे होंगे, आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, जो भी आपको पसंद है ये सब आप कर सकते हैं और अपने आप को खुश रखिए। विद दिस लवली इन्फॉर्मेशन, दिस इज योर आरजे चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम अल्फा जन लेकर आपके साथ हूं मैं। और आज अल्फा जन में थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जी हाँ, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और मैं आज आपसे मुखातिब हूं, आपका दोस्त वीर दमन। स्वीकार कीजिए एक बार फिर मेरा।

जी हाँ मन्नू, अगर आप भी आज फ्राइडे को मूवी का प्रोग्राम बना रहे हैं, वीकेंड आ रहा है तो सैटरडे संडे भी है, और अगर आज अगर मूवी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आज दो फिल्में रिलीज हुई हैं, कॉकटेल टू और समर्पित फादर्स लव। जी हाँ, ये दो मूवीज़ हैं, और अगर इनकी रिलीज़ के बारे में बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कॉकटेल टूल जो है उसमें मुख्य कलाकार जो हैं शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना है, और यह फिल्म अपने मल्टी स्टारर दिल्ली लॉन्च के कारण काफ़ी चर्चा में है। हालांकि समीक्षकों और शुरुआती जो दर्शक हैं उनकी मिलीजुली जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनके फीडबैक्स हैं, उनसे फैंस में कुछ रश्मिका मंदाना के जो रटने लहजे में थोड़ी सी निराशा लगी है। और अगर जहां हम बात करें कि समर्पित फादर्स लव जो फिल्म रिलीज हुई है उसके मुख्य कलाकार उनके मुख्य कलाकार हैं अंकित यादव और निशा अली। यह अत्यंत भावनात्मक और पारिवारिक फिल्म है जो पिता के अपने बच्चों के भविष्य के लिए किए गए खामोश त्याग को दर्शाती है। फिल्म का संगीत और निर्देशन काफ़ी संजीदा है, और हालांकि इससे रफ्तार कुछ जगह पर धीमी सी लगती है, लेकिन अगर आपने सोचा है तो ज़रूर जाइए और फिल्म देखिए और फिर बताइए कि फिल्म कैसी है। आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे अल्फा जेन में आप सुन रहे हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और आपके साथ हूँ मैं आपका दोस्त वीर धवन।

वक्त स्ट्रेस में हैं, टेंशन में होते हैं, तो उनको भी मैं बताना चाहूँगा, उनके साथ हम डिस्कस करना चाहेंगे, उनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। गुफ्तगू कैसे होगी, हम आपके साथ आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, अपनी बॉडी को और अपने जो मेंटल पीस को है वो कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, अपने दिमाग को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। तो दिमाग को डिटॉक्स, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई माइंड डिटॉक्स होता क्या है। मानसिक डिटॉक्स का जो मतलब है, मन को अशुद्ध, नकारात्मक और विचलित करने वाले विचारों से शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है उसको मानसिक डिटॉक्स कहते हैं। जिस प्रकार से पंचकर्म डिटॉक्स उपचार शरीर को शुद्धियों से मुक्त करता है, उसी प्रकार जो है ना, मानसिक डिटॉक्स नकारात्मक जो विचार जो होते हैं हमारे मन में, उनको दूर किया जाता है और मन को शुद्ध किया जाता है, ताकि हम जो नेगेटिविटी है ना उसको दूर कर दें, जो स्ट्रेस है, टेंशन है, मेंटल पीस है वो आ जाए और हम पूरे अगले नेक्स्ट वीक के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाएं। और जो हमारे मन में गलत विचार आते हैं ना, स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, चिड़चिड़ापन आता है, वो कैसे दूर हो, वही हम आज बात करेंगे आपके साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

जी हाँ, हवा हवाई आकाशवाणी एफएम रेनबो, हम भी ये चाहेंगे कि आपकी स्ट्रेस, आपके टेंशन पूरा हवा हवाई हो जाए और आप पूरे जिंदगी यूं ही हंसते खेलते और यूं ही गुनगुनाते हुए गुजारें, और जितनी भी टेंशन है उसको एक तरफ कर दीजिए, क्योंकि हम आ गए हैं ना आपके साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

और मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ दिमाग को डिटॉक्स करने के लिए कौन कौन से तरीके लोग अपनाते हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं। और आपको बता दें कि मेंटल पीस और ताजगी बनाए रखने के लिए कुछ बेहतरीन डिटॉक्स जो हैं फॉलो करते हैं, और जिसमें स्ट्रेस को कम होता ही है, साथ ही साथ आपको मेंटल पीस भी मिलता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मेंटल तनाव और चिंता बहुत ही आम समस्या बन गई है दोस्तों। दिमाग को शांत रखने के लिए लोग कई तरीकों में इस्तेमाल करते हैं, और कई देश इसके लिए स्पेशल कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, है ना। जैसे काम का दबाव बहुत ज़्यादा हो, वहाँ लोग दिमाग को डिटॉक्स यानी मानसिक सफाई के लिए बहुत ज़्यादा बाहर आउटिंग के लिए चले जाते हैं। कुछ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और कुछ बेहद असरदार तरीके भी अपनाते हैं। और मेंटल पीस और ताजगी बनाए रखने के लिए कुछ बेहतरीन डिटॉक्स टेक्निक्स भी जो हैं वो अपनाते हैं, जो ना सिर्फ स्ट्रेस को कम करती है, मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बनाती है। तो चलिए आपको बताता हूँ ऐसे कौन कौन से तरीके हैं। एक तो है फॉरेस्ट बाथिंग, जी हाँ, जिसका मतलब है प्रकृति के बीच जाकर सुकून से समय बिताना, यानी जंगल या पार्क में बिना किसी लक्ष्य के सिर्फ चलना, पेड़ों, हवाओं और प्रकृति को महसूस करना। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप जंगल की पीस और नेचुरल वातावरण में समय बिताते हैं। रिसर्च के मुताबिक पेड़ों से निकलने वाले नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड दिमाग को शांत करते हैं, स्ट्रेस हॉर्मोन्स घटाते हैं और मानसिक स्पष्टता बढ़ाते हैं, है ना। ये टेक्निक अपनाकर जरूर देखिएगा, शायद आपको भी लगे कि वाह भाई ये तो पहले पता होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, फिलहाल आपके साथ मैं जो हूँ ना, बातों का सिलसिला चलता रहेगा, और भी आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप माइंड को डिटॉक्स कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। ऑफिस की टेंशन को आप बस पेंशन लेने के लिए भेज दीजिए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन, और आज हम कह रहे हैं कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और फ्राइडे को आज हम बात कर रहे हैं माइंड डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स को करते हैं, माइंड को भी कभी कभार डिटॉक्स करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो हमारा स्ट्रेस है पूरे हफ्ते का, ऑफिस का स्ट्रेस है, किसी भी तरह का जो स्ट्रेस होता है उसको डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी पे भी अफेक्ट करता है। तो ज़रूरी है कि माइंड को भी डिटॉक्स किया जाए। बॉडी के डिटॉक्स तो होते ही हैं, लेकिन माइंड को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। और आज जैसे मैंने अभी बात की कि फॉरेस्ट बाथिंग होती है, उसके अलावा जेन मेडिटेशन होता है। जी हाँ, जेन मेडिटेशन आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसा एक मेडिटेशन है, इस पर ज़्यादा तकनीक लगाई जाती है, जिसमें व्यक्ति जो है आंखें हल्की बंद करके सांस पर फोकस करता है और विचारों को बस आने जाने देता है बिना जजमेंट के। मतलब कि रोज 10-15 मिनट शांत बैठकर किसी भी एक जगह पर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कोई विचार आए तो उसे बस आते जाते देखें, आंखें नहीं खोलनी, आंखें

0: बंद कर कर और अपने सांसों को पकड़े रहना है। और नियमित जेन मेडिटेशन से दिमाग में नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं ना, उसकी पकड़ थोड़ी कम हो जाती है, फोकस बढ़ता है और मानसिक संतुलन बेहतर होता है ना। ये मज़ेदार टेक्निक तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा जो। और भी एक तकनीक है, वो भी आपसे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला चलता रहेगा आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com।
3: कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
4: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
3: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
4: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
3: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat. Powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
5: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
6: Ye hai Akashvani aur aap sun rahe hain FM Rainbow.

0: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
1: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
0: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
1: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
0: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
9: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब

0: अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली। और सबसे जरूरी, ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं अल्फा जैन एंड थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। आज हम बात कर रहे हैं कि माइंड को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। बॉडी को तो डिटॉक्स करते हैं, माइंड को भी डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, तो कहीं ना कहीं माइंड को रिलैक्स करना भी ज़रूरी है ताकि अच्छे से काम कर सकें और अपना मैक्सिमम आउटपुट काम में लगा सकें और अपने लाइफ को भी इंजॉय कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। आज जो हम बात कर रहे थे जी डिटॉक्स में, तो उसमें हमने बात की फॉरेस्ट बाथिंग की, जेन मेडिटेशन की, और अगला जो हमारा पड़ाव है वो है अगर हम नई टेक्निक के अगर इस्तेमाल करें तो नई टेक्निक में हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने व्यवहार को, आदतों को और सोच में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव लेके आते हैं ना, तो ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस से हमें फ्री करता है जिसमें मानसिक बोझ नहीं बनता। हर दिन एक छोटी आदत सुधारने का लक्ष्य बनाएं, जैसे 5 मिनट जल्दी उठना, 1 गिलास ज़्यादा पानी पीना, 5 मिनट किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना, या बड़े बदलाव की कोशिश में अक्सर स्ट्रेस होता है, लेकिन छोटे सुधार से आत्मविश्वास बढ़ता है, दिमाग पर हल्का और पॉजिटिव असर पड़ता है। तो लाइफ में जितना स्ट्रेस आप कम रखेंगे उतना ही अच्छा है। कहते हैं ना कि अगर सफ़र पर जा रहे हैं तो जितना आप सामान कम लेकर चलेंगे अपने साथ तो उतना ही सफ़र आसान होगा, बढ़िया होगा। तो लाइफ में ऐसी ही है, हमारी लाइफ में जब हम स्ट्रेस कम लेकर चलेंगे ना तो लाइफ उतनी ही आसान होगी और उतनी इंजॉयबल होगी। लाइफ में यूं ही अगर आगे बढ़ना है तो स्ट्रेस को थोड़ा सा कम कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक। वन ऑफ द अमेजिंग ट्रैक, शायद म्यूजिक भी माइंड को डिटॉक्स करता है। एंजॉय कीजिए इस ब्यूटीफुल ट्रैक को।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हैं आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जैन और अल्फा जैन में आज बात कर रहे हैं जी हाँ बॉडी को कैसे डिटॉक्स करें और थैंक गॉड इट्स फ्राइडे और थैंक गॉड फ्राइडे के अंतर्गत हमने बात की आज अगर आप मूवी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो मूवी भी देखने जा सकते हैं और अगर घर पर रहकर अपनी मेंटल पीस को थोड़ा सा रिज्यूनिएट करना चाहते हैं अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहते हैं बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं माइंड को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं किसने रोका है। और हमने आपको बात की कि बॉडी के साथ माइंड को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं तो लाइफ में अगर कुछ करना है कुछ ज़िंदगी में सोचना है तो टेंशन को जितना हो सके पेंशन लेने भेज दीजिए और माइंड को रिलैक्स रखिए। अब अपने दोस्त वीर धवन को दीजिए इजाज़त फिर मिलूंगा एक नए सफर पर तब तक अपना ख्याल रखिएगा मुस्कुराते रहिएगा जिंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा और इस वीकेंड को और कलरफुल बनाइएगा खूब एंजॉय कीजिएगा बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करना विकसित भारत की मूल परिकल्पना है। युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखित एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अधिक प्रभावी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। श्री सिंह आज नागपुर के अंबाझरी स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड के आयुध निर्माणी परिसर में 10,000 टन क्षमता वाले आधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज विधानसभा में राज्य का संशोधित बजट 2026-27 पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने समावेशी विकास तथा सतत अवसंरचना के नए केरल का संकल्प लिया। श्री सतीशन ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के पहले बजट में स्वास्थ्य सेवा और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार

परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। अस्मिता चालिहा मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में कोरिया की किम मिन सिन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये मौसम का जादू है मितवा, काले बादल, ठंडी हवाएं, हल्की हल्की बौछारें और फिर रेनबो। साथ में गर्मा गर्म चाय का प्याला, प्लेट में पकौड़ी और चटनी और फिर रेनबो। अपनों का साथ या फिर अपना साथ और फिर रेनबो। रेनबो तो है, बाकी सब कल्पना कर लीजिए, फिर देखिए जिंदगी क्या खूबसूरत हो जाएगी। गर्मी है ये तो हम और आप दोनों ही जानते हैं, लेकिन अगर हमारा मन कह दे वाह क्या मौसम है, तो फिर क्या मौसम होगा। तो चलिए आइए ऐसे ही मौसम में हम और आप एक बार फिर मिलते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर कार्यक्रम सिटी लाइट्स में, क्योंकि मैं हूं मिस ब्राइट, नाम है मीना जैन और मैं हूं अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन।

आवाज तो हूँ मैं और फिर आप ही मेरे दोस्त थे, तो अब जो कहूँ जरा प्यार से और ध्यान से सुन लीजिएगा। वैसे आज शाम का क्या इरादा है आपका? नहीं सोचा आपने? कोई बात नहीं, जब हम हैं तो फिर आपको क्या गम है। तो चलिए आज चलते हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर, क्योंकि वहाँ पर होने वाला है एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट जिसका नाम है ट्रेडिशंस विदाउट ट्रेडिशंस। जी हाँ, हैबिटेट वर्ल्ड में शाम 7 बजे इस वर्ल्ड म्यूजिकल कॉन्सर्ट में कलीमेरो यागली और तानबुर, क्रेटन लायरा और ओड और थ्रोट अपना संगीत प्रस्तुत करने वाले हैं। राहुल जिज्ञासु होंगे पखावज, कैंडंग और ककापी बजाएंगे। और हम जा सकते हैं LTG ऑडिटोरियम, क्योंकि वहां पर है आज नाटक द प्राइस और इसका समय है शाम 7 बजे से। आपको बता दूं वैसे कि भावों से भरा ये नाटक आज मंच पर होगा। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी आज हम जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर है नाटक स्टॉर्म। कहाँ होगा? सम्मुख ऑडिटोरियम में, लेकिन इसका समय थोड़ा जल्दी है, शाम 6 बजे से। और ये नाटक है रशियन नाटककार अलेक्जेंडर ऑस्ट्रोविस्की की रचना पर आधारित और जिसका आनंद आज हम रंगमंच पर ले सकेंगे। त्रिवेणी कला संगम में कार्यक्रम जेम्स जॉयस इमर्सिव शाम 6 बजे से। ब्लूम्स डे के अवसर पर साहित्य, कला और संवाद से भरपूर ये एक विशेष जश्न हम दिल्ली वालों के बीच है। ब्लूम्स डे 16 जून 1904 को उस ऐतिहासिक तारीख को समर्पित है जिसे आयरिश लेखक जेम्स जॉयस ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास यूलिसिस में खास कर दिया था। अगर और भी कुछ जानना चाहते तो भी जा सकते हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, क्योंकि वहां पर है लव इज, जी हाँ, एक म्यूजिकल क्लाउन शो। शाम 6:30 बजे शुरू होगा और एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो भाई अब बताइए आज शाम का क्या प्रोग्राम है।

मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता हमें पहले से कहीं ज्यादा महसूस होती है, और ऐसे में योग एक अद्भुत साधन है जो न केवल शरीर को लचीला बनाता है बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी हमें देता है। योग के जरिए हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान पाते हैं और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। संतुलन और आत्मविश्वास का एहसास कराता है जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको योग की लत लग गई है तो फिर भाई बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए आज इसी सिलसिले में हम बात करते हैं पश्चिमोत्तान आसन की। ये बैठकर आगे झुकने वाला आसन है। अपने पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठें, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए कुल्हों से यानी हिप्स से आगे झुकें, फिर अपने हाथों से पैरों के पंजों को पकड़े और माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करें। मैं आपको बता दूं कि यदि पैरों तक हम नहीं पहुंच पाते हैं तो बिल्कुल भी अपने आप से जबरदस्ती ना करें। आप अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ भी सकते हैं या फिर योग स्ट्रैप की मदद भी ले सकते हैं। और अगर पीठ और हैमस्ट्रिंग्स पे खिंचाव ज्यादा हो रहा है तो आप हिप्स यानी कुल्हों के नीचे एक मुड़ा हुआ कंबल या सॉफ्ट पिलो रखकर भी अभ्यास कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने नया नया योग करना शुरू किया है तो पश्चिमोत्तान आसन बेहतर होगा अगर आप किसी के निरीक्षण में करें, क्योंकि इसमें कभी कभी अगर हमने एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। यस, अब अगर हम प्रॉब्लम की बात कर ही रहे तो आपको बता दूं कि ये आसन किसे नहीं करना है। यस, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि कब हमें ये कौन कौन से आसन है जहाँ हमें दिक्कत हो सकती है। देखिए, पीठ, पेट और हैमस्ट्रिंग्स पर पड़ने वाले दबाव के कारण अगर स्लिप डिस्क है, साइटिका है, या फिर बहुत सीवियर लोअर बैक एक है, या फिर पेट में दर्द है, या कोई सर्जरी हुई है, या इन जनरल रीसेंट में कोई सर्जरी हुई है, या प्रेग्नेंट हैं, या पीरियड्स हैं, तो आपको इस आसन से बचना होगा, ये आसन नहीं करना होगा। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखें। अब इस आसन को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा? हमारे पाचन तंत्र को सुधारने के लिए है, रीढ़ की हड्डी को और लचीला बनाने के लिए है, मानसिक तनाव कम करने के लिए है और वजन को नियंत्रित करने के लिए। ओ माई गॉड, एक ही आसन में सब कुछ आ गया है, तो फिर तो बनता ही है ये करना। लेकिन बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप बिगिनर्स हैं, आपने अभी नया नया योग करना सीखा है, तो कोई भी आसन करें तो आप किसी गुरु के अंडर में करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आप किसी भी आसन का असर तुरंत नहीं महसूस कर सकते हैं, बहुत ही कम होते हैं कि एकदम सही प्रक्रिया से किया जाए तो आपको डेफिनेटली कुछ इफेक्ट लगता है। लेकिन अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे तब आपको 7 से 15 दिन में असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो बस गहरी सांस ले और हर पल में योग का अनुभव करें। सिर्फ 4 कदम बढ़ाने हैं आपको उस योगा मैट की तरफ। 1, 2, 3, 4।

अगर आपको इस बात की लत लग गई है तो फिर मैं आपको बधाई दूंगी। क्यों, किसकी लत? बताती हूँ भाई, आज का जो जमाना है भाग दौड़ का है, हर समय हर वक्त भागम भाग। तो ऐसे में

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: आकाशवाणी FM रेनबो कार्यक्रम सैटेलाइट्स और आपके साथ हूँ मैं मीना जैन। तो दोस्तों, दिल्ली में एक शिविर लगा है। इस तरह के 42 शिविर हैं और ये 18 से 20 जून तक चलेंगे। और इन शिविरों का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि केंद्र और दिल्ली सरकार की जो भी डिफरेंट जल कल्याणी योजनाएँ हैं वो और जो सेवाएँ हैं उनका लाभ हमें एक ही जगह पर उपलब्ध हो, जैसे कि ई श्रम कार्ड है, पेंशन योजनाएं हैं या फिर राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड, ये सब एक ही जगह पर बन जाएगा। तो किस तरह की चीज़ें हैं? पिंक कार्ड है, राशन कार्ड है, ई श्रम कार्ड, जनधन खाता, लखपति बिटिया योजना, पीएम उदय योजना और जैसे टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, राष्ट्रीय व्योश्री योजना, हाउस टैक्स, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, इस तरह की जितने भी तरह तरह की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनके लिए पहले हमें अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब 3 दिन तक चलने वाले इस जन कल्याण शिविर में सभी विभाग खुद चलकर आए हैं, जो कि हमारे घर के पास ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके इन शिविरों में जाके

0: आप योजनाओं के बारे में जाने, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें और कहाँ कहाँ आप इनको किस तरह से अपने लिए यूज कर सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करें।
1: आजा प्यार की हो
2: डील। डील बोले तो
3: हाट हाट
4: हवा यार, सौदा सौदा।
3: ओहो
1: दोनों डील कर
2: टाइट, वेरी टाइट।

हमारे अगल बगल जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा होता है और हम कितनी बार इग्नोर करके बस यूं ही चले जाते हैं। कभी हम मेट्रो में बैठे होते हैं, कभी ट्रेन में, कभी बस स्टॉप पर खड़े हैं, या कभी यूं ही वॉक कर रहे हैं और हम अक्सर सुनते हैं कि फलाना को वो ब्लड ग्रुप नहीं मिला और बस फिर देर हो गई, अरे इतनी परेशानी हुई ब्लड ग्रुप को ढूंढने में, ऐसा अक्सर सुनते हैं ना। और ये हम हमेशा दूसरों को बात करते हुए सुनते हैं, लेकिन ये स्थिति कभी भी हम भी फेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में कल कुछ बहुत खास होने वाला है।

0: क्या खास होने वाला है ये हमको बताएंगे राइट वर्शिपफुल ब्रदर श्री कुशवंत सिंह रेखी जी। हेलो
1: हेलो
0: रेखी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: हाँ जी नमस्कार जी।
0: मैंने अपने श्रोताओं को इतना तो बता दिया है कि कल दिल्ली में कुछ खास होने वाला है, अब इस पर रोशनी आप डालिए।
1: हाँ जी नमस्कार जी सभी श्रोताओं को। कल हमारा जो एक टुकड़ी है फ्री मेसन्स की लॉर्ड सेंट जॉन द एवेंजेलिस्ट नंबर 22 फ्री मेसन हॉल जनपद पे रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ एक ब्लड डोनेशन कैंप कर रही है सुबह 10 से 4 बजे कल 20 जून को सुबह 10 से और शाम के 4 बजे तक ये ब्लड कैंप होगा। और इसमें सभी लोगों से निवेदन है जो भी हृष्टपुष्ट हैं वो आके अपना खून दें क्योंकि ब्लड डोनेट करने से ही बॉडी में ज्यादा ब्लड बनाने की क्षमता होती है। कभी भी किसी भी एक्सीडेंट में या कहीं पर भी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए वो ब्लड जो है बहुत बह जाता है, तो जो रेगुलरली ब्लड डोनेट करते रहते हैं उनकी बॉडी की क्षमता होती है कि वो ब्लड इमिडिएटली बना ले।
0: क्या बात है।
1: बाकी ये जो ब्लड हम कलेक्ट करते हैं ये कोई भी आपदा जो हमारे देश पे आती है
0: जी
1: कहीं पे भी ये ब्लड रेड क्रॉस सप्लाई करती है
0: जी।
1: तो अच्छा। जो भी एबल बॉडीड है वो काइंडली आए और अपना खून दें।
0: अच्छा, तो ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं ये रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ कर रहे हैं।
1: जी जी
0: ओके। तो इतना तो हम समझ ही गए कि जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है पूरा हाइजीनिक और जितने भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी देखरेख में ही हो रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जब जितने यूनिट्स कल इकट्ठे होंगे उनको बचाया कैसे जाता है, कहाँ रखा जाएगा, क्या होगा आगे उनका?
1: देखिए ये रेड क्रॉस का ब्लड बैंक है
0: जी,
1: जहाँ पे रेफ्रिजरेटेड सारी चीज है और वो प्रॉपर तरीके से वो प्रिजर्व करके रखते हैं। इसका वो ब्लड लेके जाएंगे वहाँ पे टेस्टिंग होगी सही ढंग से
0: जी,
1: वो कहीं पे भी कोई कंटामिनेशन या कहीं पे भी कहीं, क्योंकि क्या होता है कई लोगों को कुछ बीमारी होती है
0: जी,
1: कुछ होता है जिसके लिए वो ब्लड ठीक नहीं रहता, तो फिर वहां से वो सेग्रीगेट करते हैं और सही खून को वो रखते हैं अपने पास।
0: ओके ऑलराइट। तो कौन कौन ब्लड डोनेट करता है, क्या कोई वहाँ डॉक्टर होगा जो उसकी जांच करेगा और बताएगा कि हाँ आप दे सकते हैं और आप नहीं दे सकते?
1: जी डॉक्टर होंगे और वो टेस्ट करेंगे, बीपी टेस्ट करेंगे, आपसे पूछा जाएगा
0: जी
1: कि भाई आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं आपको कोई किसी ड्रग्स की या अल्कोहल की लत तो नहीं है
0: जी,
1: तो वो सारी जानकारी लेके तभी से आपको बोलेंगे खून देने के लिए। हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए
0: जी,
1: ये सारी चीजों का वो जायजा पहले करेंगे तभी से आपको परमिट करेंगे खून देने के लिए
0: जी। ब्लड डोनेशन के बाद जो भी ब्लड डोनेट करते हैं या जो दान करता है उन्हें कुछ देर के लिए वहाँ आराम करने का समय दिया जाता है, कुछ फिर पीने या खाने को दिया जाएगा?
1: जी एयर कंडीशन जगह है
0: जी,
1: और खाने के लिए उनको रिफ्रेशमेंट दी जाती है, जूस दिया जाता है, मिल्क देते हैं, फ्रूट देते हैं, बाकी सैंडविच है, ये सारी चीजें उनको प्रदान की जाती है और वहाँ पे उनको बिठाते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि वो जब तक बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाए तभी से उनको जाने को परमिट किया जाता है।
0: क्या बात है। ये जो आपका फ्री मेसन्स है ये कितने सालों से ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं?
1: ये कैंप जो पहला कैंप हमने 1994 में किया था ये इस टुकड़ी ने, और लेकिन रेगुलरली अब जो है 1996-97 से रेगुलरली चलता जा रहा है।
0: क्या बात है कि हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, बहुत सारा धन्यवाद है आपको, थैंक यू सो मच कि आप इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं और इतने लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हैं कि देखिए हम ब्लड कैंप तो नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते लेकिन अपना खून देकर हम एटलीस्ट इस जो कैंप की आपने इतनी एफर्ट की है हम उसमें सपोर्ट कर सकते हैं और ना जाने कब हमारा खून किसके काम आ जाए और बस हमारी पुण्याई में कुछ पुण्य ऐड हो जाए।
1: जी
0: नहीं, बहुत बहुत आपका आभार, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड वी विश यू गुड लक फॉर टुमारो।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू,
0: शुक्रिया। दोस्तों रक्त की महत्ता का आभास उस दिन जाकर होता है जब कोई अपना किसी अपने को रक्त के न मिलने पर खोता है, और ये तो हम समझ ही गए कि रक्तदान से हमारा कुछ भी खर्च नहीं होता लेकिन यही हमारा रक्तदान किसी के लिए जीवनदान साबित होता है। तो कोशिश कीजिए, ज़रूर कोशिश कीजिए, यहाँ भी कहूँगी बस 4 कदम ले ही लीजिए।

पानी, पानी से हम हमेशा यही कहते हैं, जाने क्यों दिल जानता है कि अगर पानी है तो आई विल बी ऑल राइट। लेकिन फॉर सम रीजंस कुछ जगह पर दिल्ली में पानी की आपूर्ति पूरी नहीं होगी। जी हाँ, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पानी नहीं आएगा फॉर 3-4 डेज। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, विनय मार्ग, सत्य मार्ग, पालिकावास, पिलंजी विलेज, सरोजनी नगर का पूरा इलाका इसमें शामिल है। एक बात तो है दोस्तों, ये तो समझ आ गई, अगर पानी नहीं तो हम नहीं। तो बस दोस्तों, अगर हम पानी बचाएंगे तो पानी हमें बचाएगा। आज से, अभी से, इसी पल से, इसी क्षण से आपने पानी की एक एक बूंद को बचाना है और इस तरह पैशनेट होकर बचाना है कि फिर पानी उसी पैशन से हमें बचाए। फिर से सिर्फ 4 कदम लेने हैं और पानी को बचाना है।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
5: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों, स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस को दिल्ली कैंट पर ठहराव का समय 2 से बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया गया है। गाड़ी की संख्या 12,239 शकुर बस्ती से जाते समय शाम 5:54 पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी और 5:59 चलेगी। उसी समय इसी तरह से लौटने समय 8:36 पर पहुंचेगी और 8:41 पर दिल्ली कैंट से चलेगी। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस का समय दिल्ली कैंट पर 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट का ठहराव समय कर दिया गया है। इट्स अ गुड न्यूज़। यस।

काश कुछ लम्हे कुछ पल मैं आपके साथ यहाँ और बिता सकती, लेकिन ऐसा ही सोचती है मेरी सहेली यानी कि सुनीता, क्योंकि वो भी स्टूडियो में आ चुकी है और उसे भी आप सब उतने ही पसंद है जितना मुझे। वो भी चाह रही है कि बस मीना अब तुम जाओ और ये समय मेरा और मेरे श्रोताओं का है। तो चलिए, जाऊंगी तभी तो वापस आऊंगी। इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाजत, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी होकर कि आप भी आज के कार्यक्रम के बाद हैप्पी हैप्पी ही होंगे। हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड एंजॉय योरसेल्फ। गुड बाय फ्रेंड्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है। इनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1000 करोड़ रुपए था।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
0: प्रधानमंत्री मोदी इस समय पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर,

0: युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्धनों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। भारत की विदेश नीति ने देश को विश्व बंधु के रूप में स्थापित किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुशल स्टेशन प्रबंधन के लिए स्टेशन मास्टरों को सशक्त बनाने संबंधी व्यापक उपायों की समीक्षा की है। रेल मंत्री ने कल वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। बैठक में स्टेशन मास्टरों के प्रतिदिन के कार्य और उनके प्रबंधन को सशक्त बनाने पर व्यापक चर्चा की गई। इसमें मल्टी ट्रैक और उच्च घनत्व के खंडों में अतिरिक्त स्टेशन मास्टरों के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। अश्मिता चालिहा मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। सेमीफाइनल में कल अश्मिता का सामना कोरिया की पार्क गांग यून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग, 6:05 और 38 सेकंड हुए हैं, प्रोग्राम शुरू हुआ है मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूं आपके साथ सुनीता शाहवादी और ये है स्टेशन ऑफ द नेशन, दिल से दिल तक 102.6 FM। और हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया है एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आज भी जैसे हम सब पूछते हैं इसमें, तो एक्चुअली इंटरेक्शन करने का एक तरीका है, हम आपसे बात करना चाहते हैं तो कोई टॉपिक ले लेते हैं। सो आज मेरा टॉपिक है कोई ऐसा हिडन टैलेंट जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता लेकिन आपके पास वो खूबी वो टैलेंट है। तो वो ऐसा टैलेंट कौन सा है आपके पास जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, सिर्फ आप जानते हैं, बताइए हमें 9868107070 पर। नंबर है हमारा 9868107070। बताइए ऐसा कौन सा टैलेंट आपके पास है जिसके बारे में सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता है, ये राज सिर्फ हम जानना चाहते हैं।

Alright, Jay, lovely song there, right? मेरे पास एक टैलेंट है कि मैं कभी किसी की चुगली नहीं करता, बुराई नहीं करता. प्रकाश को गया बाजार सीताराम दिल्ली से. वाह, क्या टैलेंट है. पर ये तो एक खूबी हो गई. आपका

शांत तरीके से किसी को भी अपनी ओर किया जाता है, इसी प्रकार मैं अपने प्रभु से कभी भी उनसे कनेक्ट हो जाता हूँ। और इतने मुझे विश्वास है हर वक्त हर कहीं मेरे परछाई बन के चलते हैं मेरे प्रभु। हाउ स्वीट। और उस मालिक, मेरे मालिक के अलावा कोई नहीं जानता सोनू बिजनौर। ऑफ कोर्स इस टैलेंट के बारे में तो वही जानते हैं, बट दिस इज़ अ सुपर्ब टैलेंट। सुनीता, मुझ में एक टैलेंट है कि रेनबो जो जॉकी से मिले टॉपिक पर लिखने का इल्म जो कोई मेरे बारे में नहीं जानता, जिससे मैं व्यस्त स्वस्थ वरिष्ठ उम्र में फिट फाइन फील करता हूँ। अनिल शर्मा से रहता हूँ। वाह, क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा टैलेंट है। डियर रिस्पेक्टेड सुनीता जी, कैसी हैं आप? मेरा सबसे अनोखा टैलेंट ये है कि मैं हर परिस्थिति से सीख लेकर उसे शब्दों और कविताओं में बदल देता हूँ। वाह, सारे लेखक गए यहाँ पे। ये हुनर मेरे दिल को पता है, दुनिया को नहीं। मोहम्मद सरफराज आलम, चौके हर दर्शना बाजार से। क्या बात है। आदाब। मैसेज मसाला मिक्स प्रोग्राम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहाँ बेगम और मरियम जैनब। ओके, आप में टैलेंट क्या है ये तो बताया नहीं आपने। ओके देन, समबडी सेंडिंग मी पिक्चर्स, आई डोंट नीड दैट। ओके, दिस गुड इवनिंग सुनीता जी, मोहम्मद इम्तियाज और सलमा बेगम जवाहर कैम कीर्ति नगर से, कि मैं तरह तरह का डिश बना लेता हूँ जो किसी को नहीं मालूम, लेकिन अब बनाता हूँ तो कह देता हूँ बस यूं ही बन गया। लेकिन हमें तो पता चल गया, अब हम आ रहे हैं सो आप बच नहीं सकते, आपको बनाना पड़ेगा, हमें पता है आप अच्छा बनाते हैं, सो आई मीन खाना, तो इसलिए हम आ सकते हैं। आप हमें ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही बन गया, वो वैसे बने या ऐसे बने हम देख लेते हैं। ओके, गुड इवनिंग रामलाल फ्रॉम गोडा झारखंड। अगर टैलेंट की बात करें तो मेरे पास एक टैलेंट है, मैं वाइफ मन की बात बिना कहे बता सकता हूँ। मैं वाइफ की मन की बात अरे ये काम तो औरतों का होता है, उसे मन में क्या नाराज़गी है या प्यार है वो मैं जान लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। और वाह, क्या बात है, तो आपकी वाइफ तो बहुत खुश रहती होगी, बिना बोले उसे सब कुछ आपको पता चल जाता है और आप अकॉर्डिंगली एक्ट करते होंगे। शुभ संध्या मैसेज मसाला मिक्स में, आज का सवाल ही कुछ हटके है जी। मेरे अंदर ऐसा कुछ कुदरती देन है, जब चार पांच साथी या गाँव की चौपाल पर बैठते हैं, सब मुझे ही कहते हैं कुछ सुनाने के लिए। पता नहीं क्यों, जब मैं पूछता हूँ आप लोग सुनाओ ना, तो वो लोग बोलते हैं आप बोलते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी वाणी मधुर, वास्तविक और प्रामाणिक होती है, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं लगता। वाह, क्या बात है। हीरामणि वर्मा भाटापरी छत्तीसगढ़ से। ये होता है कई बार, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर ये, क्योंकि कई बार मुझे भी लोग कहते हैं कि जब आप बोलते हो तो अच्छा लगता है, तो आई डोंट नो, नॉट बिकॉज आई एम आरजे, लेकिन वैसे भी कि जब आप बोलते हो तो अच्छा लगता है। गुड इवनिंग धीरज कुमार दुबई से, मेरा टैलेंट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग है। हाँ ओके, ये तो आपने ट्रेनिंग भी कर ली है। मेरे पास टेक्निकल ज्ञान है जिसे मेरे सिवा और दूसरा कोई नहीं जानता। ओके, रंजीत कुमार मंडल सिक्टी अररिया बिहार से। वाह, क्या बात है। छुपे रुस्तम सारे, और आप लोगों के अंदर इतने टैलेंट्स हैं, और भी बताइए आपके अंदर कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो किसी को नहीं पता सिवाय आपके, तो जो आप किसी को बताना भी नहीं चाहते या बता नहीं पाते हैं, तो ऐसा कोई टैलेंट है जो आप हमें बताना चाहेंगी, बताइए हमें 9868107070 पर।

0: तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
1: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
0: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
1: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
0: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग

0: इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

ऑलराइट जी, मोहित कांबोज ने जो धवन सहारनपुर यूपी से लिखा है कि मैं दूसरों की बात बड़ी पेशेंटली सुनता हूँ जो आज के लोगों में नहीं है। एब्सोल्युटली, ये तो बहुत सही बात कही आपने, होता ही नहीं, इतनी पेशेंस किसी में नहीं है। एंड माहिदा सुल्ताना कहती हैं कि जम्मू एंड कश्मीर रजौरी से कि मुझ में एक फ़नी टैलेंट है, वो ये कि मैं बहुत

बड़े पेड़ पर बहुत आसानी से चढ़ जाती हूँ और ये टैलेंट हम किसी को बता भी नहीं सकते। नहीं कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छा खूबसूरत सा टैलेंट है और आप पहाड़ों में रहते हैं तो वहाँ तो ये आम सी बात है। सत श्री अकाल जी सुनीता जी, तुसी कह मैं असी चंगे हैं। आपको क्या गुस्सा पीना आता है? नहीं आता है ना, लेकिन मुझे गुस्सा पीना आता है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि मैं उस पर गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन मैं पी जाता हूँ। ओके, गुस्सा पी जाते हैं आप जी। सुनीता जी आदाब, आवाज़ सुनकर ही आपका नाम लिखा है, बताइएगा आप अपना नाम। मैं सुनीता शाहबादिया, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया एंड ताहिरा। ओके, मेरा हिडन टैलेंट ये है कि मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकता हूँ और दूसरों को पॉजिटिव फील करवा सकता हूँ। उपदेश शर्मा, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर से। इतनी खूबसूरत से जगह से तो पॉजिटिव फीलिंग आएगी। संजय कुमार, अशोकनगर, एमपी से। मेरे घर के कैमरे ख़राब हैं और उधर कोई नहीं रहता है गाँव में। तो ये टैलेंट है आपका, ये कैसा टैलेंट है? ओके, नाउ दिस इज़ सुनीता जी, आपका स्वागत है हमारे गरीब खाने में। तो बताइए कब आ रही हैं आप मोहम्मद इम्तियाज़ जवाहर गैम से? आप ये तो बताना नहीं है ना, आप अचानक से हम सरप्राइज़ देंगे और देखेंगे कि आप में कितना टैलेंट है। नीबा राम, नागौर, राजस्थान से। कोई भी लड़का लड़की खुलकर मेरे साथ 2 घंटे बात कर ले, मैं उसका भविष्य बता दूँगा। हैं, कहाँ हैं आप? ओके, ऑल द बेस्ट। ओके मैडम जी नमस्कार, मैं मेरठ से संजय बोल रहा हूँ। आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और आज तक टॉपिक भी अच्छा है। आप भी मेरा उत्तर जानकर मुस्कुराएंगे क्योंकि उत्तर ऐसा ही है, टैलेंट भी ऐसा ही है। मेरे अंदर टैलेंट है कि मैं मरे हुए व्यक्ति को देखकर बता सकता हूँ कि अब नहीं बचेगा। हैं, मरे हुए व्यक्ति को? व्हाट, सीरियसली? That's not a joke. Seriously, मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ। जब भी बिजली संबंधी काम करता हूँ तो बड़ी सावधानी, होशियारी और बहुत समझदारी से के साथ करता हूँ। लोगों को लगता है कि करंट क्यों नहीं आता है, लोगों को यही मैं बताना चाहता हूँ कि यही मेरे टैलेंट है। ईश्वर की मेहरबानी है कि अभी तक तो सलामत हूँ। हाँ, लेकिन आप तो इलेक्ट्रिशियन हैं, आपने तो ट्रेनिंग ली हुई है ना, तो ये तो आपने ट्रेन किया हुआ है अपने आप को, इसलिए ट्रेनिंग, आपको करंट नहीं आता है। इलेक्ट्रिशियन को हम इसीलिए बुलाते हैं, वरना हम भी उठ जाते और खुद ही कर लेते। खैर, गुड। कविता टेहरी गढ़वाल से कहती, देवभूमि उत्तराखंड से, कि 2023 में सिर का ऑपरेशन हुआ है। कभी कभी बहुत दर्द होता है सिर पर, दवा का असर नहीं पड़ता है। करेला, नीम आदि का जूस पीती हूँ सुबह खाली पेट और दर्द भाग जाता है, और दर्द को हावी नहीं होने देती हूँ और काम करती हूँ। ये आपका टैलेंट है। ओके, दिस वन इज़, आपने सुदर्शन शाह जी, ये आपने लिखा है फिल्मों के नाम। ओके, दिस इज़ वेलकम टू द शो, गुड इवनिंग। मैं पहले ही गीत बेहद शानदार कार्यक्रम लाजवाब चल रहा है और हम भी शामिल हो गए हैं, हमारी भी अटेंडेंस लगा दीजिए। किशन मंजानी, नीलम स्वाति और किशोर, रेलवे कॉलोनी। आपने हमारा इस सवाल का जवाब नहीं दिया अभी। मेरे पास तो बहुत कुछ हिडन टैलेंट है, लेकिन कोई भरोसा ही नहीं करता कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकती हूँ। क्यों? टैलेंट को दिखाने का अवसर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो टैलेंट निखर नहीं पाता है और अच्छा टैलेंट होते हुए भी कहीं गुम हो सकता है। मुझे लगता है किसी के टैलेंट को अगर सपोर्ट किया जाए तो कॉन्फिडेंस आता ही है, खुशी मिलती है। झारखंड से कौन, नाम नहीं बताया आपने, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको। आपको, आप पहले करिए ना वो काम जो टैलेंट आपका है, आप जो जो कर सकती हैं, तो लोगों को अपने आप नज़र आ जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द पीपल टू कम टू यू एंड यू नो एनकरेज यू, बिना देखे आपका काम। हेलो मैम, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार, दिल्ली। हाउ आर यू? आई एम गुड। ऑन टुडेज टॉपिक आई लाइक टू से दैट आई हैव अ हिडन टैलेंट दैट आई कैन डू क्रिकेट कॉमेंट्री लाइक द ऑल इंडिया रेडियो कॉमेंट्री टीम। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो आपने कहीं किया, कहीं कोशिश की, करिए, ज़रूर करिए, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर प्रकाश गोगिया जी बहुत नेक दिल और इंसानियत पसंद व्यक्ति हैं, वे सदैव समाज और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने मेरे बारे में जो सकारात्मक बात कही उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। वे मेरे सम्मानित रेडियो मित्र हैं, उनकी सादगी, सेवा और भावना तथा सामाजिक योगदान प्रेरणादायक है। यही टैलेंट है उनका। मोहम्मद सरफराज आलम, वाह क्या बात है। मैडम नमस्कार, कहाँ से? अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्णलाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर सादिक, शेख।

शंकर गुल शर्मा। मैडम जी, रेडियो के कैसे भी चैनल से मेरा नाम अनाउंस होता है, लिसनर फ्रेंड मुझसे मिलने आते हैं। अच्छा, तो ये टैलेंट तो नहीं हुआ। थैंक्स आजी सुनीता जी, मुझे मैसेज तो पढ़ लिया लेकिन नाम नहीं बोला। ओके, आई फॉरगॉट योर नेम। आप एक बार अपना, हाँ, प्रदीप सलोजा जी, कैसे भूल सकती हूँ, आई एम सो सॉरी। ओके, दिस वन इज़, नमस्कार, आपको कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ। रोज़ मैं और मेरा परिवार आपका प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद भी आता है और प्रोग्राम से अच्छी आपकी आवाज़ है। किसकी? रोज़ ये आता है और मैं नहीं करती रोज़। ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। मुझे ना ब्रेथलेस होने का अवार्ड मिलना चाहिए कि अब हम भी आपको सुन रहे हैं, प्रोग्राम और गीत पसंद आ रहे हैं। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद अब्बासी और अब्बासी परिवार, थैंक गॉड आपने सबके नाम नहीं लिखे। अभी अभी मैं ब्रेथलेस होके उठी हूँ, बट इट्स ओके, गॉड ब्लेस आपके परिवार को। मुझे नाम लेने में कोई एतराज़ नहीं है। हेलो जी, नमस्कार, मेरठ से वीरू बख्शी। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। मैं अपना काम समय पर कर लेता हूँ और खुश रहती हूँ ओके, दैट्स वंडरफुल। बहुत टाइम से, बहुत लोग ऐसे हैं जो टाइम से करते ही नहीं हैं, मेरे घर में बहुत लोग हैं। मंजू भाटिया द्वारका से, दिल्ली से, आई मेक ब्यूटिफुल वुलन जैकेट्स, फैबुलस क्रोशिया एंड गिफ्ट टू माई फ्रेंड्स। माई हस्बैंड डज ऑयल फ्री कुकिंग। वाओ, यू आर मोस्ट वेलकम टू टेस्ट। कहाँ, आई लव ऑयल फ्री कुकिंग एंड आई रियली वॉन्ट टू डाइट। मैं भी आपके घर आना चाहती हूँ, मुझे सिखाइए ऑयल फ्री कुकिंग कैसे होती है, एंड आई जस्ट रियली वांट टू यू नो लर्न। मंजू भाटी जी, थैंक यू सो मच। ओके, दिस वन इज़, नमस्कार सुनीता जी, मैं हर किसी को हंसाने का टैलेंट रखता हूँ, जहाँ भी जाते हैं महफिल जमा देते हैं, कार्यक्रम और गाने अच्छे लग रहे हैं, देहरादून से आलोक पवार और मिनी। ओके, दैट इज़ वंडरफुल। दिस वन इज़, माफ़ करना मैम, मेरा टैलेंट है कि मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फॉल्ट का पता लगा लेता हूँ और मिनटों में ठीक कर देता हूँ। वाह, एक बार मैंने एक रेल को सही किया था जिसमें मैं खुद बैठा हुआ था। अच्छा, ट्रेन को, यू मीन, ओके, गॉड ब्लेस यू, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। आप भी बताइए आपके पास क्या है वो हिडन टैलेंट जिसके बारे में आपको पता है, दुनिया को नहीं पता। 9868107070, मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहबादी।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111

0: आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। हम यहीं पे थे और टाइम हुआ है 6:43:51 और हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहबादी। सुनीता जी, गुड इवनिंग। मेरा चैलेंज है सबकी सहायता करना, श्रोता हर्ष पन्ना MPC। ओके, आपने इससे पहले भी मैसेज लिखा है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ, अगर कोई रास्ता भटक जाए तो मैं उसको उसके घर तक पहुँचा देता हूँ। नियमित श्रोता हर्षवर्धन पांडे। ओके, गॉड ब्लेस यू। एंड देर आर मैनी मैसेजेस जो मैं पढ़ना चाहूँगी यहाँ पर। हाई, गुड इवनिंग डियर सुनीता जी, कैसी हैं आप? मैं आज के टॉपिक पर ये कहना चाहूँगी कि मैम, जब बात किसी के हिडन टैलेंट की आती है तो मुझ में एक टैलेंट है, अगर कोई मेरे सामने कितना दुखी हो लेकिन जब मैं फ़नी बातें करती हूँ तो उन लोगों को भी हंसी आ जाती है, जो सैड हो जाते हैं वो उनको मैं खुश कर देती हूँ। अंशी शर्मा हस्तिनापुर। ओके, That's a talent. मैम, MPC अक्षय कुमार, मेरे पास ये टैलेंट है कि मैं किसी से 5 मिनट बात कर लूँ तो उसको अपना बना लेता हूँ। ओफो, ओके। दिस इज़ गुरजीत मान, बठिंडा पंजाब से। एंड मेरा टैलेंट है कि मैं लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी निकाल लेता हूँ। अच्छा, और मेरे एक दो दोस्तों को ही पता है ये इसमें टैलेंट के बारे में। ओके, सो आपने बहुत लोगों को मतलब बुद्धू बनाया है, आई एम श्योर अबाउट दिस। ओके, हम भी वेट कर रहे हैं आपका मैसेज। तो मैंने मोहित कांबोज जी, आपने सहारनपुर से मैसेज किया, मैंने आपका मैसेज सबसे पहले एयर किया था, आपने सुना नहीं ही। ओके, दिस इज़ सुनीता जी, ये हमारी पसंदीदा प्रोग्राम है और हम इससे सुने बगैर नहीं रहते हैं। मेरी ख़ास बात यह है कि मैं जल्दी ही किसी से भी घुल मिल जाता हूँ, दर्द उसे हो और तकलीफ़ मुझे होती है, हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई खफा ना हो, क्योंकि अच्छा दोस्त जितनी बार उठे उतनी बार मनाओ, क्योंकि फल डाली से गिरने के बाद कीमत खो देता है। शमसुल कमर राही गंज डुनवारा से। ओके, दैट्स नाइस। नमस्ते, टॉपिक पर यही कहूँगा कि मैं सहज एवं समर्पण भाव से इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का कार्य पिछले 35 सालों से अपनी छोटी सी दुकान पर करता आ रहा हूँ, और जो वेल्डिंग बड़ी वर्कशॉप वालों के यहाँ नहीं हो पाता है वो सब कस्टमर्स यही कहते हैं कि आप कृपया एक बार प्रेम भाई वेल्डिंग वालों से ओके मालूम कर लीजिए, यदि वहाँ हो गया तो ठीक है, वरना फिर शायद कहीं जल्दी से नहीं हो पाएगा। और ये बात मेरे सभी प्रिय दोस्त मेरी कविता के बारे में कहते हैं कि प्रेम भाई, आप जो कविताएं लिखते हैं वो दिल में उतर जाती हैं। और प्रत्युत्तर में मैं सिर्फ उन्हें इतना ही कहता हूं कि दोस्तों, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं हूं। प्रेमचंद जी, थैंक यू सो मच, और आप में तो बहुत सारे टैलेंट्स हैं, ये तो हम भी जानते हैं। संजय कुमार, अशोकनगर MPC, मेरे घर के कैमरे ख़राब हैं। ओके, ये आपने पहले भी कहा था, माफ़ करना मैम। मेरा टैलेंट है कि मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का फॉल्ट पता कर लेता हूँ और उसे ठीक भी कर लेता हूँ। ओके, हाँ, गुड इवनिंग मैम। हम मैं टैलेंट है, हम इंसान को देखकर बताते हैं। आपने ये टैलेंट ऐसे लिखा है कि मुझे लगा आप थाईलैंड में हैं। तो हम इंसान को देख के बता देते हैं कि सामने वाला इंसान अच्छा है या बुरा। ओहो, हाँ, एक और टैलेंट भी है कि बेबी को एक मिनट में हंसा देता हूँ। ओके, बेबी एज इन लाइक बेब्स। हाँ, सभी के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, बस उन्हें सही मौका मिलना चाहिए। हमारे मन में आत्मविश्वास होना चाहिए, सभी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। भैरूलाल वक्तारिया धाकड़, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। ओके, सभी टैलेंटेड हैं, सीरियसली, वन आफ्टर द अदर। एंड सुदर्शन मुखी, अनिता एंड सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। हम

हर काम को समय पर करते हैं, हम साफ सफाई से रहते हैं, जहाँ से भी हमें ज्ञान की बात मिलती है उसको अपना लेते हैं। आपकी संध्या और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो। कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, दैट आई कैन रीड ब्रेन बाय आई, संजय श्रीवास्तव, गुना MPC, माय माय। ओके, कुमार गौरव इंदुरकर, नेशनल पार्क, तालुका जिम्बूर डिस्ट्रिक्ट से। आपने कहा नहीं कि आप में क्या टैलेंट है, आपने बस लिखा है आप अपना मैसेज। ओके, अभी भी आपके पास समय है। अगर आप में कोई टैलेंट है और आप मुझे बताना चाहते हैं कि आप में वो हिडन टैलेंट कौन सा है जिसके बारे में सिर्फ आपको पता है, अभी किसी और को नहीं पता है, तो बताइए ज़रा कि कैसे हैं वो कौन सा टैलेंट है। 9868107070 टाइम हुआ है 6:48 पर, अभी भी समय है आपके पास। सो जल्दी से कर डालिए मैसेजेस और 9868107070।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: ऑलराइट जी, जाने का समय आ गया है। मैडम जी नमस्कार, मैं मेरठ से शिवम बोल रहा हूँ और आपके टॉपिक पर, आपका टॉपिक है टैलेंट यानी प्रतिभा। प्रतिभा मेरे पास है, वो किसी के पास नहीं हो सकती, और वो है मेरी पत्नी। दिस इज़ द बेस्ट वन। ओके, आपकी पत्नी का नाम प्रतिभा है? नहीं, वो आप ही के पास रहेगी और हमेशा आप ही के साथ रहे। गॉड ब्लेस यू बोथ। एंड मुझे बहुत खुशी है आपकी वाइफ का नाम प्रतिभा है। आप कह सकते हैं कि मेरे पास ढेर सारी प्रतिभा है ना, और प्रतिभा सिर्फ मेरे पास है। ओके, गॉड ब्लेस यू। आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस किए, गॉड ब्लेस यू। आई विल सी यू एट 8 एंड तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गाना छोड़ जा रही हूँ, बहुत खूबसूरत सा गाना है, आपसे फिर मिलूँगी। अपना ध्यान रखिए, और आज वीकेंड शुरू हो रहा है तो हम म्यूज़िक मस्ती में मिलते हैं, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। और ये जो आज वीकेंड शुरू हुआ है उसमें भी आप अनवाइंड कर लीजिए, थोड़ा सा 2 दिन के लिए रिलैक्स कर लीजिए, एंड देन वी कैन रॉक। बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। यह वितरण योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता के विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए था। पिछले

पिछले वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपए का था, अब यह बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमाचल के तराई क्षेत्रों, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकार और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में आज बिजली चमकने और ओले पड़ने की संभावना है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। सेमीफाइनल में कल उनका सामना कोरिया की पार्क गा यून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: हे, डिड यू नो, ओवर द पास्ट 12 इयर्स अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इंडियाज डिफेंस सेक्टर हैज विटनेस्ड अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रॉम बूस्टिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग टू स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इंडिया इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डिफेंस विद कॉन्फिडेंस।
5: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
4: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
5: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
4: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
6: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.

0: म्यूजिक मस्ती।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: touch with me. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम

ऑलराइट जी, मेरे जाने का टाइम हुआ है. यू हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड एंड अपना ख्याल रखिए. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय बाय.

नमस्कार, हेलो आदाब, सत श्रीकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। और अब वक्त हो गया है आपके अपने प्रोग्राम का, यानी खूबसूरत यादों के सफर पर चलने का, क्योंकि आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने आ गया है आपका खास प्रोग्राम आपकी याद आती रही। और आज आपकी याद आती रही के साथ स्टूडियो में पहुंच चुका है आपका दोस्त होस्ट प्रवीण शर्मा। तो दोस्तों रहिएगा हमारे साथ इस खूबसूरत प्रोग्राम में, इस खूबसूरत सफर पर चलते हैं। अगले एक घंटे तक रहिएगा हमारे साथ और सुनते रहिएगा आपकी याद आती रही।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6 दिल से दिल तक।
3: हर चीज जमाने की जहां पर थी वही है, हर चीज जमाने की जहां पर थी वही है। हसरत नहीं, अरमान नहीं, आस नहीं है, यादों के सिवा कुछ भी मेरे पास नहीं है। यादें भी रहें या ना रहें, किसको यकीन है।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
7: आकाशवाणी FM रेनबो।
8: अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें, हर एक मोड़ पर हम गमों को सजा दें, चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दें।

दोस्तों आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, आप अपने सुझाव शिकायत हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ईमेल आईडी है, नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है feedbackfmrainbow@gmail.com। जी हाँ, feedbackfmrainbow@gmail.com। और सुनना ना भूलें, हर महीने के तीसरे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रोग्राम बिंदास बोल। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

वेलकम है फ्रेंड्स, आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल यूर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दोस्तों, दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर मुख्तलिफ जगहों पर सुन रहे हैं और आप हैं इस वक्त आपकी याद आती रही कि खूबसूरत महफिल में प्रवीण शर्मा के साथ।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

वही गेसू, वही नजरें, वही आइरिस, वही जिस्म, मैं जो चाहूं तो मुझे और भी मिल सकते हैं। वो कमल जिनको कभी उनके लिए खिलना था, उनकी नजरों से बहुत दूर भी खिल सकते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

दोस्तों, यादें हमारे जीवन का वो आईना होती हैं जिसमें हम अपने अतीत की तस्वीर को साफ देख सकते हैं। कभी कभी यादों के आईने पर वक्त की धूल जम जाती है दोस्तों, लेकिन जब हम मन के झाड़ू से इस धूल को साफ करते हैं ना, तो अतीत के वो मंजर हमें बिल्कुल साफ नजर आने लगते हैं और हम खो जाते हैं उन लम्हों में, उन पलों में।

दोस्तों आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, गीत अच्छे लग रहे हैं, तो आज हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनका हम तारुफ करवाना चाहेंगे। दोस्तों ये हैं पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, प्रदीप सलूजा जनकपुरी नई दिल्ली से, किशन भजनानी नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, कस्बा गुन्नौर यूपी से, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फाहिरा फारिया और ताहिरा, आदिल कमर हैं गुन्नौर से, और टंपा है, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको प्रोग्राम पसंद आया, गीत अच्छे लगे। बस फिलहाल दोस्तों अब आपसे हो गया है इजाज़त लेने का वक्त, तो हम जाते जाते सिर्फ इतनी कहेंगे, लेकिन हाँ आपको एक और बात बताते चलें कि आपसे एक बार फिर होगी मुलाकात, हमारी प्रोग्राम होगा, जी हाँ आप जानते हैं प्रोग्राम होगा रंगे महफिल रात 11:05 पर। तो फिलहाल जाते जाते इतनी अर्ज कहेंगे कि हो जुदाई का सबब कुछ भी मगर, हो जुदाई का सबब कुछ भी मगर, हम उसे अपनी खता कहते हैं, वो तो सांसों में ढली है मेरे, जाने के लोग उसे मुझसे जुदा कहते हैं। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा

0: कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना भेल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टाइन स्टेट यानी ऐसा देश बताया जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है और बाद में उसी का शिकार बनता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने ये बात कही। उन्होंने ये बयान तब दिया जब पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। चीन में मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: You just heard Michael Jackson with Given to Me. Let's see the clock, 41 minutes past 10 p.m. Moving ahead, but before that, we have to take a short and sweet break. So do not, and I'll repeat that, do not touch the dial. I'll be right back after these messages. Break time.
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, हेलो आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल ईयर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। अब वक्त हो गया है गजलों के खास कार्यक्रम का, जिसका नाम है रंगे महफिल। और आज रंगे महफिल के साथ स्टूडियो में हाजिर है आपका अपना प्रवीण शर्मा। तो कबूल फरमाइए मेरा प्यार भरा आदाब।

सुनी सुनी थी फिजा, सुनी सुनी थी फिजा। मैंने यूं ही उसके बालों में गुथी खामोशियों को छू लिया। वो मुड़ी, थोड़ा हंसी, मैं भी हंसा। फिर हमारे साथ नदियां, वादियां, कोहसार, बादल, फूल कोपल, शहर जंगल, सबके सब हंसने लगे। एक मोहल्ले में किसी घर के किसी कोने की छोटी सी हंसी ने दूर तक फैली हुई दुनिया को रोशन कर दिया है। जिंदगी में जिंदगी का रंग फिर से भर दिया है।

0: इज तक।
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशन।

दोस्तों, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप इस वक्त रंगे महफिल की खूबसूरत महफिल में अपने दोस्त प्रवीण के साथ और सुन रहे हैं गजलें। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये गजलें पसंद आ रही होंगी। वैसे दोस्तों, जब हम अपने हमदम के नज़दीक होते हैं ना, तो वो पल हमारी ज़िंदगी के सबसे ख़ास पल बन जाते हैं, सबसे ख़ास। उनके पहलू में बैठकर हम दुनिया की सारी बोझिल बातों को भूल जाते हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि भूल जाना चाहते हैं। सारे गम मानो काफूर हो जाते हैं और हम उन खूबसूरत लम्हों को अपनी नज़रों में कैद कर लेना चाहते हैं।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
2: कोई चिराग नहीं है मगर उजाला है, कोई चिराग नहीं है मगर उजाला है, गजल की शाख पे एक फूल खिलने वाला है, गजब की धूप है एक बेलिबास पत्थर पर, पहाड़ पर तेरी बरसात का दुशाला है।

0: कोयल सी तेरी बोली
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब रेनबो पर
3: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, सुबह पुनः आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है। आप सुन रहे हैं म्यूजिक लियर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दोस्तों, दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर और मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। आप हैं इस वक्त रंगे महफिल की खूबसूरत और खुशगवार महफिल में अपने दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ, और लुत्फ उठा रहे हैं खूबसूरत गजलों का।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
3: ठीक है।
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और

0: समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
2: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा, कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
0: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
3: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
4: यूं तो हर रिश्ते का अंजाम यही होता है, यूं तो हर रिश्ते का अंजाम यही होता है। फूल खिलता है, महकता है, बिखर जाता है। तुमसे वैसे तो नहीं कोई शिकायत, लेकिन शाख हो सब्ज तो हसास फजा होती है। हर कली जख्म की सूरत ही जुदा होती है। तुमने बेकार ही मौसम को सताया, वरना फूल जब खिल के महक जाता है, खुद ब खुद शाख से गिर जाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, हम अपने महबूब के दीदार के ख्वाहिशमंद होते हैं। ज़िंदगी में हमें सुकून के पल तभी मैसर होते हैं जब हमें हकीकत में अपने महबूब के दीदार हो जाते हैं। दोस्तों, उनसे मुलाकात होने पर हम उनकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगते हैं और उनकी हुस्न की तुलना चांद तक से कर देते हैं। और शायद फिर ये भी कहते हैं कि

0: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कभी तो शाम ढले अपने घर गए होते, कभी तो शाम ढले अपने घर गए होते, किसी की आंख में रहकर समर गए होते। गजल ने बहते हुए फूल चुन लिए, वरना गमों में डूब के हम लोग मर गए होते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और

0: इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत के इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी और सत्यापन तंत्र को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्विता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्विता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:05 और 38 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं जीरो आर शो। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लवर्स फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें लता मंगेशकर और अमित कुमार की है। और दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: और दोस्तों, आप जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म रॉकी से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: और अब आपको सुनाते हैं श्रेया घोषाल और तोशी राणा की आवाजों में शोर इन द सिटी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: 12:30 होने को है दोस्तों, आप सुन रहे हैं जीरो आर शो मेरी यानी अर्चना बिसारिया के साथ। और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म शोबिस से, आवाजें शान और श्रेया घोषाल की।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा।
3: अच्छा,
2: जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: हम किसी से कम नहीं। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत जिसे गाया है आशा भोसले ने।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: शुक्रिया। ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अभी आप सुनेंगे और आवाज दी है सोनू निगम ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन।
1: पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आइए सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत, आवाज किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ. S. जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को

राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के विषय में बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम सुहानी रात, जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान

सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में

भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के जॉयल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। इससे पहले वे FATF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करता रहा है। ऐसे में ये नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क से निपटने और गैर कानूनी वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने के प्रयासों को और मजबूत करती है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम और माह में भी मंगलवार तक बारिश का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टाइन स्टेट यानी ऐसा देश बताया जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है और बाद में उसी का शिकार बनता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:05 और 45 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भुलाए ना बने, नॉन स्टॉप संगीत।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: शील शील कहाँ खोई हुई हो?
3: मिलन की इन खूबसूरत घड़ियों में इंतजार की वो कभी ना भूलने वाली घड़ियां याद आ गई, जब मैं तुम्हारे लिए तड़पा करती थी, तुम्हारा इंतजार किया करती थी।
2: मैं भी तो तड़पा करता था, मैं भी तो इंतजार किया करता था।
3: उस इंतजार में भी एक अजीब मजा था। और अभी थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहकर इंतजार की उन खूबसूरत घड़ियों में एक बार फिर से जी कर देखे, जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। तुम वहां चले जाओ रवि, दूर उस पार, और मैं वहां चली जाती हूँ, दूर उस पार। जाओ ना।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर जाएंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित होने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित तीन युद्धपोत दूनागिरी, अग्रे और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवरब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। विदेश मंत्री

डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के जाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे जो जुलाई 2025 से इस पद पर कार्यरत हैं। श्री अग्रवाल वर्तमान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले भी वे FATF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। ये फैसला 17 से 19 जून तक हुई FATF की बैठक के दौरान लिया गया। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। लंदन के पास बेडफोर्डशायर इलाके में दो ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। लंदन के टाइम्स अखबार ने बताया है कि बेडफोर्ड अस्पताल के कर्मचारियों को लगभग 50 घायलों के बारे में सूचित किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि दोनों ट्रेनों की टक्कर में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज से दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर रहेंगे। राज्य में भाजपा सरकार गठित होने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत दूनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झार सुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपये लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा

कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। लंदन के पास बेडफोर्ड शायर इलाके में 2 ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। लंदन के टाइम्स अखबार ने बताया कि बेडफोर्ड अस्पताल के कर्मचारियों को लगभग 50 घायलों के आने की आशंका के बारे में सूचित किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि दोनों ट्रेनों की टक्कर में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। दोहा डायमंड लीग में भारत के स्टार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4थे स्थान पर है। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे वे अपने सीजन के पहले इवेंट में 4थे स्थान पर रहे। श्रीलंका के स्टार और विश्व शीर्ष खिलाड़ी रमेश थरंगा पथिरागे ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: हिमालय की गोद से लेकर हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 MHz पर। जारी है कार्यक्रम सारे कामा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज से दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर रहेंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपये की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवरब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त करने की नीति का समर्थन करता है। ऐसे में ये नेतृत्व भूमिका आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने के प्रयासों को और मजबूत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी का उल्लेख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि एक महत्वपूर्ण फैसले में ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। लंदन के पास बेडफोर्डशायर इलाके में 2 ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टामर ने हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दोहा डायमंड लीग में भारत के स्टार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट और जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतन में 4थे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे वह अपने सीजन के पहले इवेंट में 4थे स्थान पर रहे। वहीं श्रीलंका के स्टार और विश्व शीर्ष खिलाड़ी रोमेश थनंगा पथिरागे ने 88.68 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ग्रुप डी के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में पहुंच गया है। कैमरून बर्गेस के आत्मघाती गोल और एलेक्स फ्रीमैन के हेडर से अमेरिका ने पहले हाफ में ही 2-0 की बढ़त हासिल कर ली। 2 मैचों में 2 जीत के साथ अमेरिका नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली मैक्सिको के बाद दूसरी टीम बन गई है। फुटबॉल विश्व कप में आज 4 मैच होने वाले हैं। ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड का मुकाबला मोरक्को से और ग्रुप सी के मैच में हैती का सामना ब्राजील से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।